Hava hava na na na na na na na na na na na उड़ चलेंगे। बहुत ही हार्ड गाना है यार, बहुत ही, मतलब कहाँ इनके सुर लग रहे हैं, कहाँ हाई नोट से ऊपर जा रहा है, देन नीचे आ रहा है, टेढ़ा जा रहा है, इट्स अमेजिंग है। मोहित चौहान इज ऑल्सो वन ऑफ द अंडर रेटेड सिंगर, मैं कहूँगा। काफ़ी गाने गाए हैं लेकिन उतना नाम नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। नाम तो हो चुका है बट फैन फॉलोइंग उतनी नहीं हुई, बट बहुत ही अलग ही इनकी आवाज़ है। अगर आपने इनको सुना होगा तो बहुत सालों पहले एक गाना आया था, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, ये गाना इतना सही था यार। मतलब ऑब्वियसली तब हमें पता नहीं था, मैंने तो पहली बार इनको रॉकस्टार के थ्रू ही जानना शुरू किया था, एंड देन व्हेन आई सॉ हिम लाइव परफॉर्मिंग देयर एज वेल, मुंबई में भवंस कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, इतना अमेजिंग शो था रॉकस्टार के प्रमोशन को लेकर। पर ये सब, बने रहिए इस आर में, आपके लिए एक अमेजिंग सी खबर भी लाने वाला हूँ मैं, तो बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में। लेट्स प्ले द सॉन्ग। बचाओ क्या?

डिस्को डिस्को आज वैसे गाना चलना बनता है क्योंकि आज ऑब्वियसली फ्राइडे है, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्लान आउट. वैसे कुछ प्लान किया है तो मुझे बताइए. कल सोच रहा हूँ यार मॉम डैड को मैं चेरी ब्लॉसम्स का जो कुछ है, मतलब यू नो अलग अलग जगह है, वो दिखा के लेके आऊँ क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ राइट टाइम टू शो दैम. एंड इहान का भी आई गेस पहला है जहाँ पे वो समझने लगा है. सो या आप मुझे बताइए कोई परफेक्ट प्लेस जहाँ पे मैं उनको ले जाना चाहूँगा. आई मीन मुझे ले जाना चाहिए. आप मुझे रिकमेंड करिए कोई परफेक्ट प्लेस जो बहुत ही बढ़िया हो और यू नो फोटोग्राफी के लिए भी प्लस कुछ व्लॉगिंग भी अगर हम बनाए तो बना सकते हैं वहाँ पे. एंड यस होपफुली आई फिंगर क्रॉस वेदर बहुत ही अच्छा होना चाहिए. सो आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे. बट यस आज की बॉलीवुड सक्सेस स्टोरी पे भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं. वो है सयानी गुप्ता जो कि आज अपना बर्थ डेट भी मना रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक सिक्योर कॉरपोरेट करियर भी छोड़ दिया था. 9 अक्टूबर 1985 को कोलकाता में बॉर्न सयानी गुप्ता बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर्स और डांस में काफ़ी इंटरेस्टेड थी. उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद में एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब भी शुरू कर दी. उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उन्हें एक साल के अंदर ही प्रमोशन मिल चुका था. लेकिन अच्छी सैलरी और सिक्योर करियर होने के बावजूद उन्हें अंदर से लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ और ही करना चाहते हैं और उनका असली पैशन एक्टिंग था. इसीलिए उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, कॉरपोरेट जॉब छोड़ दी, पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में एक्टिंग की पढ़ाई करने लगी. लेकिन ये डिसीजन इतना इजी नहीं था. उनकी मदर शुरू में ही उनके एक्टिंग करियर के अगेंस्ट थी. फैमिली की कंसर्न और अनसर्टेनिटी के बावजूद सयानी ने अपने ड्रीम को परस्यू करना नहीं छोड़ा और आखिरकार उनकी मदर ने भी धीरे धीरे उन्हें उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. 2012 में उन्होंने secondmarriage.com से अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया. लेकिन 2015 की फिल्म मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ में खनून का रोल उनके करियर के का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना. और इसके बाद फैन, जॉली LLB 2 और आर्टिकल 15 जैसे फिल्मों में भी उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई. टेलीविजन और OTT की अगर दुनिया में बात करें तो उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई, स्पेशली इनसाइड एज और 4 More Shots Please. या अगर आपने ये देखा है तो शी इज़ वन ऑफ द फोर गर्ल्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा. एंड और उनकी जर्नी यही नहीं रुकती. 2026 में सयानी ने आसमानी के साथ राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी एक नई शुरुआत की है और इस तरह उन्होंने एक्टिंग से आगे बढ़कर अपनी स्टोरीज खुद क्रिएट करना भी शुरू कर दिया है. सयानी गुप्ता की स्टोरी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये मिलता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी या फिर सिक्योर जॉब नहीं होता. कभी कभी अपने आप को समझना, रिस्क लेना और अपने पैशन के लिए कंसिस्टेंटली काम करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. और इसी बात पे एक्चुअली हमने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था कि सक्सेस जो है वो कैसे परखते हैं लोग. तो आप इसका ऑब्वियसली सर्च करते हैं, जहाँ पे विजय पूजा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई है दैट यू नो इफ़ यू हैव लोन्स एंड एवरीथिंग एट्सेट्रा दैट डजेंट मीन दैट यू नो इट विल बी अ सक्सेसफुल और नॉट. इस तरह से क्या जो हमारे नेबरहुड है और क्या हमारा समाज है सोचता है, तो वो भी आप सुन सकते हैं रोवा ऐप के ज़रिए. बट आप बने रहिए बिकॉज और भी पॉडकास्ट की खबर आपको बतानी है. लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे. लेडीज एंड जेंटलमैन, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Lunchtime Rant Line.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
3: वेलकम बैक लंच टाइम रेंटलाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो आप मुझे भेज सकते हैं और कुछ मैसेजेस मुझे मिले भी हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। लेकिन एक मैसेज मुझे ऑलरेडी आ चुका था, उसे मैं पढ़ लेता हूँ। एंड राइट, एक का मैसेज आया रिगार्डिंग व्हाट आई शुड बी डूइंग। उन्होंने बोला है कॉर्नवेल पार्क में आप जा सकते हैं फॉर ब्रिंग यू नो टू हैव अ गुड लुक और टू हैव अ गुड फोटोग्राफ सेशन। ये जो अभी बहुत ही ब्लॉसम्स वाले जो ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब के फोटोज ले सकते हो। सो यस, आई विल डेफिनेटली गोना गो देयर। आई मीन आई बीन देयर, बट आई थॉट मे बी आई माइट गेट सम अदर सजेशन एज वेल, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लंच टाइम रेंट लाइन के लिए ये रहा मैसेज। पूजा का आया है, ये कहती हैं माई रेंट इज अबाउट पीपल हु आस्क यू टू स्प्रेड द बिल इक्वली वेन दे हैव ऑर्डर ट्वाइस एज मच एज एवरी वन एल्स। Last weekend, we went out for dinner with friends and I order one main and a drink. But someone else also ordered starter. Someone else ordered starter. Two drinks and dessert. When the bill came, they said, let's just split it equally. Why should I pay for food I didn't even eat? Next time, I'm asking for separate bill. ये काफ़ी लोगों की आपने एकदम दिल वाली बात बोली, यानी कि द पर्सन हु ऑलवेज डज दैट यू नो, ये काफ़ी कॉमन है। मेरे को यहाँ का ये कंसेप्ट बढ़िया लगता है। यहाँ पे भाई ये खुद ऑर्डर करो जो करना है एंड देन यू पे इट। बट हाँ, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आता है दैट यू नो व्हेन यू ईटिंग टुगेदर इन द सेम, मतलब ये टेक अवे तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एक रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं साथ में खा रहे हैं तो वहाँ पे तो कैसे कैलकुलेट करोगे यार, मतलब थोड़ा अजीब भी लग जाता है यू नो व्हेन यू सिट डाउन। बिकॉज हम मुंबई में जब मैं था तब वहाँ पे हम करते थे, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे तो ऑब्वियसली वहाँ पे अलग अलग बिल लिखा आता था कि किसने क्या खाया किसने क्या नहीं खाया, तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन पे। अरे हाँ, ये आप कर सकते हो, ये एक बार ट्राई करना, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू पेड यू विल हैव द बिल विद द यू नो किसका कितना पैसा लगा, तो अकॉर्डिंगली यू डिवाइड इट राइट। बट अगर हाँ, यहाँ पे कुछ और है आपके पास सुझाव जो आपने किया हो ट्राई, तो डू लेट मी नो, आप मुझे जवाब दे सकते हैं यहाँ पे 5599 पे। क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक यार ये तो, मतलब कहते हैं ना कि आप खाना खाने तो जाते हो बट ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी कॉमन होती है। एक दो बार ठीक है बट बार बार तो पॉसिबल नहीं है राइट। ये जवाब दीजिए आप मुझे 5599 पे।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: फिर पीने की तमन्ना है।
1: वेल चलिए मौका देते हैं पहला, जहां पे आप जीत सकते हैं इनाम। कौन सा इनाम? अरे फेस्टिवल चल रहा है भाई साहब, फेस्टिवल फॉर्च्यून। आप जीत सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विथ हम एंड ओनली हम। वेल यस, ड्रॉ जो है 30 अक्टूबर को होने वाला है, यानी 30 अक्टूबर को पता पड़ जाएगा कि कौन जीता है इतना ढेर सारा पैसा। ढेर सारा पैसा भाई। पहला NZPMI लिखिए अपने नाम के साथ, स्पेस डेफिनेटली बीच में आना चाहिए, और मुझे 5599 पे भेज दीजिए। NZPMI, पी बोले तो पैरट, राइट? सो NZ बोले तो न्यूजीलैंड, PMI बोले तो पैरट, मुंबई इंडिया। ये मुझे अपने नाम के साथ भेज दीजिए 5599 पे, बिकॉज इसके थ्रू आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स। जी हाँ, अनलॉक योर प्रॉपर्टी ट्रू वैल्यूज विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर फ्री साइट असेसमेंट। आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं nzpmi.co.nz, या फिर उनकी वेबसाइट 0800-4-NZPMI, ये उनको कॉल कर सकते हैं 0800-4-NZPMI। टेक्स्ट लिखिए मुझे लॉजिक और स्पेस के साथ अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए, बिकॉज लॉजिक आपको जीतवा के देगा $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स। सो दो मौके मिल चुके हैं आपके। वेल यस, ये जो ऑफर था मैंने बताया था न्यू वर्ल्ड वाउचर्स मिलेंगे $1,000 के, वो आया है लॉजिक फाइनेंस की तरफ से। लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, 0800 लॉजिक जी। वेल टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई। आप उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे hum.roa.nz। आपके पास ठीक 5 मिनट है, फटाफट से मैसेज भेज दीजिए 5 मिनट में, और आप इसी के साथ पहुंच जाएंगे ड्रॉ में। स्टैंडर्ड करियर रेट्स अप्लाई। लंच के मंच

0: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं लेटेस्ट खबर का। लेटेस्ट खबर भी काफी इंटरेस्टिंग है अभी ऑकलैंड। इंटरेस्टिंग क्या मतलब काफी एक हीरोइक माफिक भी है न्यूज़ ये। ऑकलैंड के बॉम्बे एरिया में एक पेट्रोल स्टेशन पर एक कार में आग लग गई थी और एक मिस्ट्री मैन ने अपने हिम्मत और क्विक थिंकिंग से एक बड़ा एक्सीडेंट होने से रोक दिया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कार फ्लेम्स और स्मोक से गिरी हुई थी और फ्यूल पंप के पास खड़ी थी और उस वक्त इस अननोन मैन ने कार में एंटर करके हैंड ब्रेक रिलीज किया और कार को पंप से दूर पुश कर दिया, जबकि दूसरे लोग आग बुझाने में मदद कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उस आदमी की ब्रेवरी की वजह से सिचुएशन और डेंजरस होने से बच गई। फायर को सेफ्टी एक्सटिंग्विश कर दिया गया और किसी और डैमेज की रिपोर्ट तो नहीं आई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हीरो बिना किसी रिकग्निशन के वहां से चला भी गया। अब पुलिस उस मिस्ट्री मैन को आइडेंटिफाई करके थैंक यू कहना चाहती है। अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप पहले तो वेबसाइट पे जाइए और वीडियो को देखिए और पुलिस को कॉल करिए 105 पे और बताइए उन्हें कि ये कौन है, बिकॉज यू नो दैट नॉट एवरी हीरो वेयर्स द कैप। दैट्स अमेजिंग यार, मतलब मैं देख रहा हूँ वीडियो एंड बहुत ही सही, लाइक बंदा पता नहीं कहाँ से आया एंड देन ही लिटरली जस्ट सेट इनसाइड एंड ड्रोव इट एंड उसको आगे ले जाके एंड देन ही जस्ट वेंट अवे। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। लंच
1: बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: वेल, एक दुख भरी घटना हुई थी कल इवनिंग के टाइम, आई थिंक अराउंड 5 or 6 बॉलीवुड के, मतलब यहाँ के 5 or 6 बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नाना पाटेकर को, नाना पाटेकर जी का 75 ईयर में उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है 8 अक्टूबर यानी कि कल के दिन। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और उनके अलावा बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने काफ़ी ट्रिब्यूट दिया है। और जो महाराष्ट्र के सीएम है अभी के, देवेंद्र फर्नांडिस, उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका फ्यूनरल जो है वो फुल स्टेट ऑनर के साथ दिया जाएगा। नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी पावरफुल एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई है। क्रांतिवीर से लेकर नट सम्राट तक और उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया है। एक्टिंग के अलावा वो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से बहुत ही दूर रहते हैं, बट उन्होंने एक्टर माखरंड अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन भी एस्टैब्लिश किया था, जो ड्रॉट अफेक्टेड फार्मर्स और विलेजेस की हेल्प और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम करती है। वेल, एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है नाना पाटेकर जी की, उनकी एक्टिंग इतनी जानदार थी, इतनी बढ़िया है कि आधे से ज़्यादा को लगता था कि वो सचमुच भी ऐसे गुस्से में है या ऐसे ही हैं, बट काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि वो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी काइंड और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और काफ़ी लाइक इट इज़ वेरी नाइस टू मीट देम पर्सनली एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और सबसे खास पता है क्या, इम्प्रेसिव बात क्या लगती है कि इतनी शोहरत के बाद, एकदम बढ़िया घर होने के बाद भी वो आज की तारीख में भी गांव में ही रहना पसंद करते हैं, अपने फार्म हाउस पे या फिर वहाँ की खुद की एक जो पीछे गार्डन है बढ़िया सा, वहाँ पे खेती करते रहते हैं और उनको उस तरह की लाइफ जीने में बहुत ही मज़ा है। मैं कल बात कर रहा था अपने दोस्त से और उसने भी ये बोला कि यार थोड़ा डर सा लग रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि यार आजकल किसी को भी इतना यंग एज में आ रहा है अटैक, पता ही नहीं पड़ रहा है कि जो शहर में रह रहे उनको तो आ ही रहा है, जो गांव में रहते हैं जिनको पसंद है वहाँ का, जो एकदम देसी घी का खाना खाते हैं या फिर प्योर खाना खाते हैं, उनके भी साथ ऐसा ही हो रहा है। वेल, देयर कुड बी मैनी रीज़न, मैनी अदर रीज़न एज वेल, नॉट जस्ट द फूड, बट स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो सच में जो आपको बहुत ही परेशान कर सकती है। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है, बड़ी है भी ऐसी, क्या अगर इतनी महंगाई है, सबको किसी को जॉब की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को फ्यूचर की टेंशन, किसी को किसी और चीज़ की टेंशन, किसी को फैमिली की टेंशन, ये हर एक चीज़ है जो काफ़ी कॉमन हो चुकी है आजकल के टाइम पे। सो या, डेफिनेटली स्ट्रेस कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल तो है अभी हाल फिलहाल, बट जितना कोशिश करो आप उतना कम करने की, दैट्स व्हाट आई कैन से। या बट यस, अ बिग ट्रिब्यूट टू हिम एंड कंडोलेंस टू हिज फैमिली फ्रॉम हम टीम।
2: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: सुकून जगी।
1: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मैं हूँ, 12 बजे से शुरू हुआ था शो एंड यस अंटिल 3 आई एम हियर। उसके बाद सैंडी विल बी स्टार्टिंग द कॉफी ब्रेक, कॉफी ब्रेक के बाद रुजबे उनका साथ देंगे द ड्राइव शो। सो आप बने रहिए, सुनते रहिए आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो का नाम है लंच बॉक्स शो। अगर आप सिटी में हैं तो 87.7 एफएम के जरिए सुन सकते हैं या फिर आप 104.2 एफएम के जरिए तो सुनते ही हैं। रोवा ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट से अब फिर आप पूछ रहे हो यार इंटरनेट है मतलब हमारा तो डेटा जाएगा। वेल लेट मी पुट सम लाइट ऑन दैट। आप जितना एक 20 सेकंड की स्टोरी डालते हैं सोशल मीडिया पे, जितना डेटा वो यूज होता है 20 सेकंड, नॉट 20 मिनट, 20 सेकंड का, उससे आप एक घंटे तक सुन सकते हैं उस उतने डेटा से। यानी कि मान लो आपको से उतना ही डेटा दिया जाता है जितना 20 सेकंड के रील स्टोरी में होता है, उतना आप एक आर तक सुन सकते हैं। यानी कि ऑब्वियसली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ड्राइव पे फोकस देना, आपको फोन पे स्टोरी बना के डालने का नहीं है। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो रो ऐप ऑन करो और एंजॉय करो मेरा शो। जी हाँ, बढ़िया, साफ बने रहिए, इस आर में भी आपके लिए बहुत कुछ है। फिर से मैं, अगर आपने मिस आउट किया है द कॉम्पिटिशन जहाँ पे आप जीत सकते हैं काफ़ी $5,000 तक के शेयर्स, तो यस डोंट वरी, इस आर में भी मैं फिर से अनाउंस करने वाला हूँ। तो आप बस सुनते रहिए और मजा आएगा। जी हाँ, तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सॉन्ग।
2: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक लेटेस्ट खबर की बात करते हैं. न्यूजीलैंड में एक सिडनी बेस्ड ऑडिटर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि एक कोलैप्स्ड मेडिकल कैनबीज कंपनी के ऑडिट से जुड़े काम में मल्टीपल फेलर सामने आए हैं. वेल, फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी यानी FMA ने ऑडिटर स्कॉट बेनिसन का न्यूजीलैंड लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है. ये फेलर्स ग्रीन फर्न इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड था, खास करके 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्वालिटी रिव्यू के दौरान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर. ग्रीन फर्न इंडस्ट्रीज तारानाकी बेस्ड कंपनी थी जो मेडिसिनल कैनबीज, इंडस्ट्रियल हेम्प और हेम्प फूड सेक्टर्स में काम करती थी, लेकिन फेब 2025 में कंपनी अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाई और रिसीवशिप में चली गई. FMA के मुताबिक ऑडिटर ने अपने लाइसेंस की मल्टीपल कंडीशंस का प्लान जो है वो नहीं किया. रेगुलेटर ने कहा कि डिसीजन प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बाद लिया गया है और आइडेंटिफाई कंडक्ट सीरियस था. हाउएवर, स्कॉट बेनिसन को इस डिसीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ की अपील भी करने का राइट है, जो देखते हैं क्या होता है. बट ये केस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि कंपनीज के फाइनेंशियल ऑडिट्स में एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स और पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर भरोसा करते हैं, जो ऑब्वियसली काफ़ी काम भी आता है.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
2: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
2: बस इतना ही.
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: My Titan Mega Henderson अब weekdays पे सुबह 6 बजे से खुला है. Building supplies, timber, power tools और trade essentials सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो. Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. My Titan Mega Henderson.
6: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
9: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
10: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: या रिप्ले।
1: वेल स्किप या रिप्ले में सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कुछ स्पेशल चीजें हो रही हैं हमारे रो ऐप पे भी और हमारी वेबसाइट पे भी, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देती है और हम भी आपको देते हैं। यहाँ पे इस दिवाली हम लेकर आ रही हैं रामायण एक कथा। रामायण की टाइमलेस कहानियां सिर्फ एक से दो मिनट के स्पेशल स्टोरी टेलिंग सेगमेंट में मंडे से दिन के अलग अलग टाइम पर सुनिए रामायण के मेमोरेबल कैरेक्टर्स, इंस्पायरिंग मोमेंट्स और लाइफ लेसन्स। इस फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट कीजिए जनरेशन से चली आ रही कहानियां और उनकी विजडम को। जी हाँ, सो यस, रामायण एक कथा ओनली और हम ये आप सुन सकते हैं। स्पेशल इलेक्शन ड्राइव शो टाकानिनी से लेबर कैंडिडेट खरक सिंह के साथ हम के इलेक्शन स्पेशल में हुई इंपॉर्टेंट इश्यू पर सीधी बात। स्मॉल बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम, कम्युनिटी सेफ्टी, ट्रैफिक और साउथ ऑकलैंड के फ्यूचर पर उनका क्या कहना है। साथ ही क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन के लेटेस्ट पॉलिटिकल डिबेट पर भी उनकी राय जानिए। पूरी कन्वर्सेशन को सुनने के लिए आप मुझे 5599 पे ड्राइव लिख के भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुंच जाए और आप जो भी काम कर रहे हैं ये डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर फ्री, व्हेनेवर यू वांट टू, यू कैन लिसन टू दिस ओटियोरा स्पीक्स। हियर द कन्वर्सेशन बिफोर यू मेक योर डिसीजन।
2: Lunchbox with Ketan.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं और भी अपडेट की। न्यूजीलैंड के यंग रेसर, ये स्पोर्ट्स की खबर है, ये न्यूजीलैंड के यंग रेसिंग ड्राइवर रायन वुड के लिए बाथर्स्ट 1000 सिर्फ बाथर्स्ट 1000 सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि पिछले साल की हार्ट ब्रेक को ओवरकम करने का मौका था। यहाँ पे 2025 में रायन वुड ने और उनके को ड्राइवर जेडन ओजेदा रेस जीतने की पोजीशन में थे। दोनों ने रेस के दौरान सबसे ज़्यादा लैप्स लीड किए, लेकिन फिनिश के करीब उनकी फोर्ड मस्टैंग में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई और विक्ट्री हाथ से निकल गई। रायन के लिए ये मोमेंट काफ़ी इमोशन था, खास करके जब उन्होंने गैरेज में अपनी टीम के मेंबर्स को रोते हुए देखा। इस साल रायन की एक नई को ड्राइवर जैक्सन इवंस के साथ टोयोटा सुप्रा में वापस आए और उनका गोल है अपनी पिछली हार्ट ब्रेक को रिडेम्पशन में बदलना। लेकिन 9 अक्टूबर यानी कि आज के दिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान रायन की एक कार की एक हैवी क्रैश का शिकार हो गई। उनकी कार वॉल से टकराई और सेशन रेड फ्लैग करना पड़ा। रायन खुद को कार से सेफली बाहर तो निकाल सके और मेडिकल चेक के लिए भी वो क्लियर हो गए हैं, बट उनकी टीम के सामने क्वालिफाइंग से पहले कार को रिपेयर करने का चैलेंज है जो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या रायन वुड इस सेटबैक के बाद कमबैक कर पाएंगे और बाथर्स्ट की ट्रॉफी जीतने का जो अपना सपना है वो उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। सो लेट्स वेट एंड वॉच।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम ड्राइविंग यू होम। Drive show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं है उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
7: Voting feels easier when you know what to expect. Accessible resources are available to help you prepare to vote in the 2026 general election. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You can vote from Monday 26 October to 7 p.m. on Election Day, Saturday 7 November. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Bunnings are driving great value on auto essentials with BarsBugs 1-litre windscreen cleaner concentrate only $10 or Armour 1-litre car wash just $7.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings Warehouse.
9: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: Tech Talk के सेगमेंट में स्वागत है. Space अब सिर्फ सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन और साइंटिफिक रिसर्च तक लिमिट नहीं है. दुनिया के कई कंट्रीज स्पेस में मिलिट्री वेपन्स और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, लेकिन इन सिस्टम्स के एक्चुअल पर्पस और कैपेबिलिटीज को के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जाती है. सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइसेस भी है, प्लस ऑफ कोर्स सेम टाइम्स वो ये भी देखते हैं कि कहीं क्योस नहीं क्रिएट हो जाए इस वजह से. बट एक रिसेंटली खबर आई थी कि अमेरिका के एयरफोर्स सेक्रेटरी ट्रॉय मैंक ने कंफर्म किया है कि यूएस ने ऑर्बिट में ऐसे वेपन्स डिप्लॉय किए हैं जो हॉस्टाइल अटैक से अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वेपन्स एग्जैक्टली क्या हैं और कैसे काम करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्पेस बेस्ड वेपन्स में सैटेलाइट्स को डिसेबल करने वाले सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिग्नल जैम करने की टेक्नोलॉजी, लेजर और साइबर अटैक्स शामिल हो सकते हैं. अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया समेत 13 और भी कंट्री हैं जो कि काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को एक 2026 रिपोर्ट्स में एग्जामिन किया गया है. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन स्पेस ट्रीटी स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ऑर्बिट में रखने पर बैन लगाती है, लेकिन कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर क्लियर रिस्ट्रिक्शंस की कमी है. नए इंटरनेशनल रूल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे बात भी करेंगे, लेकिन अटकी हुई है कि स्पेस वेपन्स कैसे माना जाना चाहिए. सो यस, सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि अगर स्पेस में सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया तो उनका डेब्रिस के हजारों टुकड़े जो है वो दूसरी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं और इससे GPS, इंटरनेट, वेदर फोरकास्टिंग और ग्लोबल कम्युनिकेशन जैसे एसेंशियल सर्विस भी अफेक्ट हो सकते हैं. वेल ऑब्वियसली काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि काफ़ी लोग इसको लिंक भी करते हैं टू द UFOs एज वेल. UFOs बोले तो नॉट जस्ट एलियन थिंग बट समथिंग विच इज़ फ्लाइंग अप देयर एंड इज नॉट आइडेंटिफाइड. जी हाँ, अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट बेसिकली. तो सैटेलाइट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है दैट ऑफकोर्स वो जब किसी से टकराती है, चाहे नॉट जस्ट अदर सैटेलाइट बट कभी मीटियोर से या फिर कभी कुछ और चीज़ों से, तो टकराने से जो टूटती है तो वो आकाश में ही रहती है और ऑब्वियसली कोई कोई रेंज में आ जाती है अर्थ एटमोसफेयर पर, वो वहाँ से गिरने लगती है और उसी को देख के लोगों को लगता है दैट इट माइट बी अ UFO. सो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन सा बना हुआ है.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

What a voice, Rekha Bhardwaj. Well, इनकी आवाज जितनी अच्छी है उतनी ही इनकी कहानी भी रियल बेस्ड है, उस पे कभी और चर्चा करेंगे. बट अभी हाल फिलहाल चर्चा का विषय है इस बार का फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहां पे आप जीत सकते हैं $5,000 के शेयर्स दिवाली विथ हम. पहला मौका NZPMI की तरफ से. NZPMI लिखिए स्पेस के साथ अपने नाम, मुझे भेज दीजिए. मेक श्योर करें कि आप नाम और NZPMI के बीच में स्पेस हो, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस हमें मिले थे विद कंटिन्यूएशन, सो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज द कंपटीशन पार्ट ऑफ कंपटीशन. सो जैसे आप भेजेंगे ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकेंगे $1,000 वर्थ ऑफ माइटर 10 वाउचर्स. So yes, regarding NZPMI, unlock your properties through sale value with NZPMI, your local development expert for a free site assessment. आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करिए nzpmi.co.nz या फिर उन्हें कॉल करिए 0800-4-NZPMI, 0800-4-4 NZPMI. और दूसरा मौका है लॉजिक. लॉजिक लिखिए और मुझे 5599 में भेज दीजिए अपने नाम के साथ. इसके साथ ही आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जहां पे आप $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स जीत सकते हैं. लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कैंडोला, अ हाउस होल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, 0800 लॉजिक जी. विजिट hum.rua.nz, ये उनकी ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं. बट यस, आपके पास ठीक और ठीक 5 मिनट ही हैं टू अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन. एंड दैट्स ऑल, आई विल सी यू On Monday. Tab tak liye, bye bye, take care and love you. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: केतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
6: Lots.
5: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
6: Probably.
5: Am I paying for this free coffee?
7: Definitely.
5: Will they talk me into an upgrade?
6: Oh.
5: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
8: True Midas.
0: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with three 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
10: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility, terms and conditions, fees and exclusions apply.
11: Rusbe, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
12: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
11: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
12: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
11: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
12: बुक नाउ विद सन टूर्स।
11: कॉल करें 0800-478-686।
13: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: Check.
15: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
14: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. National is pledging $300 million in favourable loans for water storage projects if re-elected. The new policy is one of several the party says will boost farming security. Spokesperson Todd McClay says it would help farmers harness a vital resource.
17: We get more rain per person than almost any other developed country. We're just not good at storing it. And it's the difference between a normal season and selling stock in a drought.
16: The SPCA is backing New Zealand First's promise to ban the private sale and use of fireworks. Spokesperson Anya Dale says fireworks can be harmful for many animals.
18: 3/4 of dogs and cats show fear during fireworks. 4 out of 5 horse owners report anxiety and panic in their horses. It also impacts our vulnerable native species and farm animals and zoo animals as well.
16: Police want to hear from a man who sprang into action when a car caught fire at an Auckland petrol station. The blaze broke out on Mill Road in Bombay around midday yesterday and saw a mystery man push the unoccupied vehicle away from nearby pumps after entering it and releasing the handbrake. Police say his quick thinking and courage prevented a bad situation from turning into a potentially deadly one, and they want to find him and acknowledge his actions. To sport, injuries have ruled out Black Caps Mark Chapman and Zach Folkes from the upcoming T20 series against India. All-rounder Josh Clarkson and fast bowler Blair Tickner have been called in. Cricket with General, formerly Fujitsu, still New Zealand's favourite heir. And day two of the Supercars event at Bathurst, and the second and final practice session of the day gets underway in just on 15 minutes. Qualifying is from 10 past 6.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: मौसम की हालचाल में डिस्कवरीज के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 20.1 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम आज का अच्छा खासा सनी ब्राइट, कल का वेदर भी ऐसा रहेगा. सनसेट आज का 7:33 पर.
14: द बीट ऑफ बॉलीवुड
8: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
14: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
7: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी, और अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में, और उसके बाद कंटिन्यू रहेगा ड्राइव शो में. सो कैसे हैं आप, और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? सो फार आपका हफ्ता कैसा गया है? ऐसा फील हो रहा है कि गर्मियाँ आ चुकी है. फील्स गुड एक्चुअली. मैं जितनी देर तक है सही है. आज अगर आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आज अगर आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. यू नो, न्यूजीलैंड का कल्चर ऐसा लेट बैक बोला जाता है. काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं कंट्री से और कहते हैं कि यार लेट बैक कल्चर है यहाँ पे, कि इतनी देर तक तो सारी शॉप्स बंद हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ पब्स एंड बार्स ये सब चीज़ें जो है ये देर तक ओपन रहते हैं. लेकिन वो रूल भी पहले डिफरेंट था. तो आज का दिन जो है इतिहास में लिखा गया था, 9th October 1967. आज ही के दिन में न्यूजीलैंड में पब ओपन हुए थे फॉर द फर्स्ट डे और टिल 10 PM. सो 1967 से ये शुरू हुआ. उससे पहले रूल था कि 6 पब्स भी बंद हो जाएंगे. सो काफ़ी चीज़ें थी उसके कारण ये सब हुआ था. फॉर रफली 50 years, 50 साल तक जो पब पैट्रन्स होते थे, दे यूज़ टू रश टू ड्रिंक बिफोर क्लोजिंग टाइम. मतलब काम ख़त्म किया, फटाफट पब भागे, जिसे 6 o'clock स्विल भी बोला जाता था. तो ये चेंज जो था, एक रेफरेंडम हुआ बाद में, जिसके बाद न्यूजीलैंड का ड्रिंकिंग कल्चर भी शिफ्ट हो गया. फिर 10 क्या धीरे धीरे आगे और डिले होता गया. बढ़िया. बिफोर 1967 पब्स भी 6 बंद होते थे.

0: 3:14 एट द मोमेंट हो चुके हैं रॉकस्टार मूवी का ये गाना आप सुन रहे थे ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन एंड मोहित चौहान की आवाज में. वैसे कल का ट्रेंड मेकर्स अगर आपने मिस आउट किया है जहाँ पे नाना पाटेकर को ट्रिब्यूट दी थी एंड उन्हें के डायलॉग्स और उनकी मूवीज के गाने प्ले किए थे 6 to 7 के बीच में, तो आप ये सुन सकते हैं रोवा ऐप पे जाके. सो रोवा पे जब आप जाएंगे या फिर इफ़ यू गो टू hum.rova.nz तो वहाँ पे ट्रेंड मेकर्स आपको दिखाई देगा एंड ट्रेंड मेकर्स के ऊपर क्लिक करो एंड यू विल सी द एपिसोड नाना पाटेकर का जो स्पेशल ट्रिब्यूट था येस्टरडे 6 to 7 के बीच में, वो फुल वहाँ पे जाके सुन सकते हैं. अदर ऑप्शन इज़ कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका लिंक हमने पोस्ट कर दिया है.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Irvine, सिर्फ रोवा पर.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Whites separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki. All together Auckland.
4: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chili butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.
5: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
7: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
8: यस बेबो.
7: कैच क्या है?
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
7: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
8: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड.
9: TNC supply.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Coffee break with Sandy.
13: काफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड कैंडिडेट नॉमिनेशंस 2026 की जनरल इलेक्शंस के लिए क्लोज हो चुकी है. सो टोटल 17 पार्टीज ने रजिस्टर किया है. 17 रजिस्टर्ड पार्टीज है. 17 एंड 530 कैंडिडेट्स जो है ये कॉन्टेस्ट करेंगे वोट को. पार्टी लिस्ट एंड इलेक्टोरेट कैंडिडेट्स अभी ऑनलाइन है. vote.nz पे जाके यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद वोटिंग प्लेस लोकेशंस एज वेल. सो ऑफ द कैंडिडेट्स 382 जो है आर स्टैंडिंग इन बोथ an electorate and on a party list as well. So another 61 jo hai wo party list mein hi hai sirf. While 22 registered party candidates are standing in electorate only. So kafi parties jo hai ye register hui hai. 17 parties register hui hai jisme Act New Zealand hai, Alliance Party hai, Animal Justice Party is there, then Aotearoa Legalized Cannabis Party hai, Conservative Party New Zealand is there, Free Palestine is different party, then 7th party is Green Party, then Labour Party, National Party, New Zealand First Party, New Zealand Loyal Party hai, then New Zealand Outdoor and Freedom Party, ye bhi hai, Opportunity Party bhi hai, वैसे Opportunity Party ki leader se hum agle hafte baate karne wale hain. Maori Party is there, then Tokarua Party is there, Vision New Zealand and Women's Right Party. So these are the 17 parties जो इस समय पर registered हुई हैं. इनमें से कुछ parties के साथ बातें की है, कुछ parties के साथ आने वाले दिनों में बातें होने वाली है. कल Labour Party के candidates से हमने बातें की थी, तो अगर वो आपने miss out किया है तो drive लिख के भेजेंगे 5599 पर, तो आपको वो full interview मिल जाएगी. एंड जैसे आपको बताया कि next week opportunity party से हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में कॉन्टैक्ट हमने हर किसी को किया है. ईच एंड एवरी वन हमने कॉन्टैक्ट किया है. तो जो हमारे पास अभी सो फार रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं. एंड आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं उन्हीं को हम गैदर करके आगे तक पहुँचा रहे हैं. सो नेक्स्ट विल बी अपॉर्चुनिटी पार्टी, तो उनके लिए कोई क्वेश्चन आपका है तो ड्राइव कीवर्ड के साथ आप यहाँ पे भेज सकते हैं 5599 पर.
10: Bollywood's most wanted.
9: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
11: मैं लाऊं अपना A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

3:29 एट द मोमेंट हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी मंडे से आपके लिए यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। दिवाली आने वाली होगी, दिवाली का फेस्टिवल बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो ऐसे मौके पे दिस दिवाली आप टाइमलेस स्टोरी ऑफ रामायण विद हम ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे मंडे ऑनवर्ड्स। सो आपके लिए हम रामायण एक गाथा लेके आ रहे हैं, जो कि एक प्रोड्यूस सीरीज है। एक या दो मिनट की स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स होने वाले हैं, एक या दो मिनट के ही, जो आपको कुछ मेमोरेबल स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड मोमेंट्स के थ्रू लेके जाएंगी फ्रॉम रामायण। सो दिस विल बी प्रेजेंटेड अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे, थ्रू आउट द डे एक्चुअली में। एंड इसके लिए बस सुनते रहेगा, ये मंडे से आपके लिए शुरू होने वाला है, ब्रेकफास्ट शो से शुरू होगा ये, एंड अक्रॉस डिफरेंट शोज आपको ये सुनने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ वैसे आपको एशियन फैमिली सर्विसेज के बारे में भी बता दूँ, मेंटल हेल्थ जो है ये पार्ट होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ का। जब हम अपनी फिटनेस के बारे में कैलोरीज काउंट करते हैं, ये सब चीज़ें काउंट करते हैं, वहीं पे मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जस्ट एज वी केयर फॉर आवर बॉडी, इट इज़ ओके टू सीक सपोर्ट फॉर आवर माइंड टू। सो जब आपको बॉडी के ऊपर काम करना होता है, यू गो फॉर अ जिम, वॉक करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है, देन इट इज़ ओके टू सीक सपोर्ट। एंड इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड और स्ट्रगलिंग टू मैनेज योर इमोशंस, यू डू नॉट हैव टू फेस इट अलोन। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल इमोशनल सपोर्ट देती है फ्रॉम द पीपल जो आपके कल्चर को समझते हैं। सो आप एशियन हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर है, इट इज़ टोटली फ्री सर्विस, इनका नंबर है 0800-862-342 एंड इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंशियल एज वेल। इट्स 0800-862-342। इफ़ यू और समवन यू नो इज़ इन इमीडिएट डेंजर, तब आपको 111 पे कॉल करना है। सो एशियन हेल्पलाइन इनका नंबर है 0800-862-342।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi,
3: मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
5: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
6: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, BFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं. 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं. तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं. सर्च BFSL और कॉल 09846-9934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.

0: guarantees true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: वैसे 9th अक्टूबर है, 3:38 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आज ड्राइव शो में आपको मौका मिलने वाला है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. सो आज आपको दो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ड्राइव शो में आफ्टर 4 PM. वेल, वन कॉम्पिटिशन इज जहाँ पे $1,000 कैश इस ड्रॉ में आप शामिल हो सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर आपके नाम हो सकता है. ये दो में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. इसमें ड्रॉ में शामिल होने का मौका आपको ज़रूर मिलने वाला है. यू नो, एंट्रीज, जब हम यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं तो आप जितनी मर्जी एंट्रीज यहाँ पे भेज सकते हैं, बट रिमेंबर 5599 पर आप जब भी मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड करियर रेट अप्लाई, तो ये ध्यान में आप रखिएगा. टर्म्स एंड कंडीशन हमारे कॉम्पिटिशन की वेबसाइट पर है, hum.rover.nz, जहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी.

0: 43 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड मूवीज के बारे में बातें करते हैं तो 16th अक्टूबर को मूवी आने वाली है नई नवेली। यामी गौतम की ये मूवी है। यामी गौतम को हम देर बाद देखने वाले हैं। वैसे धुरंधर में हमने देखा था लेकिन गेस्ट रोल में देखा था, बट यस इसमें तो फुल फ्लेज रोल में हम देखने वाले हैं। अपेरेंटली इस मूवी के लिए पहले कृति सैनन को साइन किया गया था बट शी वॉज वेरी बिजी विद कॉकटेल 2, जिसके कारण ये जो मूवी है ये यामी गौतम के पास गई। दशहरा के अराउंड ये मूवी एक्चुअली में 16th अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। सो सुनते हैं इस मूवी का ट्रेलर।
1: अरे बोलो काक बसुंडी।
2: भाभी डायन है।
3: भाभी आलतेम पाँव रखिए ना, हम भी तो देखें आपके शुभ चरणों के प्रिंट सीधे हैं या
4: अरे मोहिनी क्या हुआ?
5: कैसे बेहोश हो गई यार? अभी तो होश में थी।
6: पंटू बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है।
7: अरे मोहिनी ने तो पूरे परिवार की काया ही पलट कर दी। हाँ
8: इसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब।
9: ये सब क्या क्या बनाया बेटा?
5: आप लोग समझ आ रहा है कुछ है? इतना सद्गुण संपन्न को कैसे हो सकता है, सोचो ना यार।
2: वही तो वजह होगी भैया, इतनी बड़ी बात करने को सोच ही कर रहे होंगे ना, क्या बिल्कुल घुइया है क्या हम?
3: ये जो अच्छी अच्छी बातें हुई ना दादी, ये सब तो घर के अंदर हुई ना, असली खून खराबा तो घर के बाहर हुआ था दादी।
10: चिटा डबी गलत चला, प्रभाव पाप दस्त ले।
11: डायन ने असली रूप में आ
12: अरे यार
13: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई डायन।
2: भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो।
8: अबे
2: डीमन नहीं है, विशुद्ध भारतीय डायन है। हनुमान चालीसा पढ़ो।
8: ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
13: त्रेता युग में शक्ति को पाने के लिए एक राक्षस ने अपनी जान लगा दी। नाम तो सुना ही होगा, रावण।
10: आज मैं तुमसे तुम्हारा दशहरा छीन लूंगा और फिर संसार पे होगा रावण।
0: सो ये मूवी 16th अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एंड या मूवी का नाम है नई नवेली। बालाजी मोहन जो है वैसे ये एक तमिल फिल्म मेकर है जो कि पहली बार हिंदी में बॉलीवुड में कह सकते हैं कि अपना डेब्यू करने वाले हैं एज अ डायरेक्टर इस मूवी के साथ।
14: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम Accurate traffic.
6: Better traffic starts now. Mostly clear overnight with a low of 13 degrees. The Northern's heavy from Esmond Road to Oniwa Road. Town to Silverdale taking 48 minutes to Massey 19. On the Southern, heavy traffic northbound from Highbrook Drive to Green Lane. Town to Manukau 40 minutes to Drury 1R9. Southwestern slow in both directions through Mangere Bridge. And the city to the airport taking 26 minutes.
7: Want to freeze fuel tax? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
8: It's Woolworths Health and Body Sale. Get in quick for half price on Asano products. And 1 litre Palmolive body wash or 700ml shampoo or conditioner, just $6.89 each. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
9: Now when you're in the loop with ANZ and jump on a bus, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT buses with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
10: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
11: Glad I got my enrollment sorted the other day.
12: See, bhai, I told you it was easy.
13: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
12: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
13: Really? What if I miss it?
12: Well, your vote won't count for this year's election.
13: Achha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
14: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
16: Yes, Bebo.
15: Catch kya hai?
16: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
15: I still can't believe it. No catch.
16: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
17: PNC Supply.
18: Hum, time check.
19: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
18: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
20: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. Police investigating a fatal crash involving a cyclist near Christchurch are seeking the driver of a small white hatchback. The incident happened just before 10:30 this morning in Governor's Bay. Police say the vehicle was travelling south on Dyers Pass Road at the time. Meanwhile, police investigating the death of a 21-year-old Christchurch father say a post-mortem examination has now been completed. Braden Hepworth was last seen alive 5 weeks ago, and police found a body at a Hereford Street address yesterday. National is pitching for farmers' votes with a promise to shore up fertiliser supplies. It says it will secure agreements to protect New Zealand from export restrictions and back local producers with a new fund. Spokesperson Todd McClay says a two-track approach is needed in uncertain times.
21: We'll negotiate deals with countries we buy from, and we're announcing $10 million to co-invest with our own fertiliser makers, ensuring that as times may become tough, we have greater resilience.
20: The SPCA is backing New Zealand First's promise to limit fireworks to public displays. Spokesperson Anya Dale thinks the policy is a wise one.
22: We absolutely are not the fun police. If there's notified public displays, the owners can make proper management strategies to make sure that they are safe.
20: To sport, the final practice session for the day at Bathurst is underway. In the opening session, Kiwi Supercars driver Ryan Wood had a heavy crash. He was unscathed, but the car won't make qualifying from 10 past 6. Motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. And Black Caps' Mark Chapman and Zach Folkes are injured and out of the T20 cricket series against India. Josh Clarkson and Blair Tickner come in.
18: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
19: Playing Bollywood's biggest hits.
18: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19.6 डिग्रीज, ऑलमोस्ट लाइक 20 डिग्रीज. सो आज का ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:33 पर.
19: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
18: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के तीन मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आपके लिए ड्राइव शो शुरू हो चुका है. आज रुजबे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपका यहाँ पे साथ ज़रूर दे रही हूँ. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है, ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. आपका हफ्ता कैसा गया है, एक वर्ड में, एक ही अक्षर में अगर आपको बताना हो कि आपका हफ्ता पूरा का पूरा कैसा गया, शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. 5599 इज़ द नंबर. ड्राइव कीवर्ड के साथ बताइएगा कि पूरा हफ्ते को अगर आपको एक वर्ड में समराइज करना हो तो वो एक वर्ड क्या होगा. तो मेरे लिए, अगर मैं अपने लिए बोलूं, आई विल से हैपनिंग. हैपनिंग आई विल से, या. सो आपके लिए क्या रहेगा पूरा का पूरा हफ्ता, अगर आपको एक वर्ड में बोलना है तो वो एक वर्ड क्या होगा, यहाँ पे आप लिख के भेज सकते हैं. 5599 इज अ नंबर. एंड थोड़ी देर में आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है फेस्टिवल में इस पार्टिसिपेट करने के लिए, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए. दिवाली आने वाली है तो ऐसे मौके पर ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स आपके लिए हम अगले हफ्ते भी शुरू कर रहे हैं. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है, एंड कुछ और भी आपके लिए यहाँ पे मंडे से शुरू होने वाला है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड.

वाइब मूवी का गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे, जो कि कुणाल खेमू की मूवी है और इसमें प्रीति जिंटा भी है। आपने देखी है ये मूवी? वैसे सिनेमास में थी ये मूवी, अगर आपने देखी है तो बताना कैसी लगी ये आपको मूवी। एंड इलेक्शंस के टाइम पे तो इस समय पर फुल ऑन कैंपेन्स जो है ये हो रही है। एंड आज वैसे बंद भी हो चुका था जो कैंडिडेट नॉमिनेशंस है, आज क्लोज हो चुका है, जिसमें 17 पार्टीज ने रजिस्टर किया एंड 530 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करने वाले हैं वोट को। तो ये सारी की सारी लिस्ट अगर आप जानना चाहते हैं, vote.nz इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट vote.nz पे अगर आप जाते हैं तो अगर आपने बहुत पहले वोटिंग के लिए रजिस्टर किया था, आप अभी भी आपकी वोट वैलिड है कि नहीं है, अगर आपको चेक करना है आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करनी है वोट, तो वो भी आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। रिमेंबर, इस साल से रूल्स थोड़े चेंज हो चुके हैं, 25th अक्टूबर से पहले पहले तभी तक आपको ये करना है, वोट अपना रजिस्टर कराना है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके हाथ से वोट करने का एक प्रेशियस चांस जो है ये निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि वोट ना हर किसी को करनी चाहिए, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ के वोट करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक पार्टी की पॉलिसीज़ को ज़रूर समझें एंड देन अकॉर्डिंगली हम वोट करें। इसके लिए आप डिफरेंट पार्टीज़ की वेबसाइट पे जाइए, उनकी पॉलिसीज़ वहाँ पे, सबकी पॉलिसीज़ वहाँ पे लिस्टेड है, अच्छे से रीड करो। आप किस पॉलिसी के साथ अलाइन करते हैं उस हिसाब से आप अपने वोट कीजिए। यहाँ पे भी हम इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पार्टीज़ के लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एवरी थर्सडे इलेक्शन स्पेशल में, और हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि आपको पुश करना टू गो आउट एंड डू योर वोट, मतलब अपनी वोट जाके आप कीजिएगा। आज वैसे क्रिस हिपकिन ने बोला कि अपॉर्चुनिटी वोटर्स के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि उन्हें वोट करके आप बेसिकली यू आर गिविंग अवे योर वोट बिकॉज वो नेशनल के साथ रहेंगे। एंड नेशनल लीडर क्रिस्टोफर लक्सन जो है, इन्होंने प्रॉमिस किया है $300 मिलियन इन वाटर स्टोरेज लोन्स एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी पुश एज वेल। एंड ये इनकी आज बेसिकली न्यूज़ आई। एंड और भी काफ़ी कुछ हुआ बिकॉज अभी कैंपेन्स के चलते हुए क्या हो रहा है कि सब पार्टी लीडर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी पार्टी लीडर वॉज इन वेस्ट ऑकलैंड टुडे, क्रिस हिपकिंस वॉज इन मॉस्क टुडे, जहाँ पे उन्होंने इस्लामाफोबिया के ऊपर एड्रेस किया, उसके ऊपर बातें की कि यू नो टॉलरेंस के बारे में बात की कि इट शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर हु दे आर। तो किसी के अंदर अगर कोई फोबिया है तो वो सही नहीं है, वो हेट में ही आता है। तो ये सब बातें उन्होंने वहाँ पे जाके की। एंड या एवरी पार्टी इज़ आउट एंड अबाउट राइट नाउ। तो इसके बारे में खैर और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, बट टू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टी लीडर्स एंड कौन से कैंडिडेट्स है, vote.nz इज़ अ वेबसाइट फॉर यू।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 किलोमीटर पे आवा, that's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800

0: फ्री फोटो। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
1: माई टिटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माई टिटन मेगा हेंडरसन।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
7: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
8: T's and C's apply.
9: Are you ready to go home?
10: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
11: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: 4:19 हो चुके हैं, सुपर से ऊपर आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आया है, एंड आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर आपको ना फ्री टिकट मिलती है, मतलब कोई भी टिकट आप ले सकते हैं, कोई भी क्लास के टिकट ले सकते हैं, फ्री टिकट मिलती है टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वुड यू गो समवेयर और टू समवन? सो इसलिए मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वुड यू गो समवेयर, किसी जगह जाना चाहोगे, और टू समवन, या किसी के पास जाना चाहोगे आप उस फ्री टिकट को लेके? यू नो, हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती है, तो मे बी आप जिस फेज में अभी हैं राइट नाउ, वुड यू गो समवेयर या फिर टू समवन, आप क्या पिक करेंगे? 5555 पर मैसेज करके या कॉल करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, इज़ इट समवेयर फॉर यू और इज इट समवन फॉर यू? वेल, जब तक आप सोच रहे हैं, ऐसे सपना का कॉल आया है मेरे पास. हाय सपना.
13: हाय सैंडी, कैसे हो आप?
12: बढ़िया सपना, आप कैसे हो?
13: बस सब ठीक है, बहुत दिन हो गए, बात भी नहीं हुई हमारी.
12: आई नो,
13: बहुत छुट्टियां है ना, तो टाइम टेबल ऊपर नीचे रहता है.
12: हाँ, वो और स्कूल हॉलीडेज भी है ना अभी.
13: हाँ, वही वही वही वही वही स्कूल हॉलीडेज की वजह से, अदरवाइज टाइम तो घर पे ही.
12: ठीक है, तो सपना, सो वुड यू गो, हाँ तो वुड यू गो समवेयर या फिर टू समवन?
13: आई वुड गो टू समवन.
12: समवन, एंड कौन है समवन?
13: मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई हैव बीन फ्रेंड्स विद हर सिंस सेकंड ग्रेड, एंड मुझे उसकी बहुत याद आती है, शी इज बैक इन दुबई.
12: ओह ओके,
13: तो मुझे उसको विजिट करने का बहुत मन है.
12: तो चिल आउट उसके साथ करोगी, सो यू वुड गो टू दुबई अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए.
13: और वही दुबई में हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो मतलब मेरे जो सिस्टर और ब्रदर इन लॉ है वो वही रहते हैं.
12: और घूमने के लिए बहुत कुछ है ना वहाँ पे?
13: ना, वो घूमना नहीं है,
12: घूमना नहीं है. ओके,
13: हम खाने, स्ट्रीट फूड खाने जाएंगे और मिलने जाएंगे सब.
12: सही है, खाना तो अच्छा है वहाँ पे.
13: खाना अच्छा है, सस्ता है ना,
12: सस्ता भी है, बहुत वैरायटी है खाने की.
13: right.
12: Yeah, true. Thank you, Sapna. And have a very good weekend.
13: How about you, Sandy?
12: Mere sare someone yehi hai. So I will go somewhere.
13: Achha, okay.
12: I will go somewhere or maybe Greece.
13: Greece, okay.
12: Yeah.
13: Nice.
12: Thank you, Sapna.
13: Okay, thank you.
12: Have a good weekend. Bye.
13: You too.
12: ओके सो आप भी यहाँ पे बता सकते हैं मैसेज करके भी या कॉल करके कि आपको फ्री टिकट मिलती है तो वुड यू गो समवेयर या फिर समवन, ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. वैसे एक आर्टिकल आया है अबाउट न्यू ईवीज, ऑकलैंड के बारे में है ये, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के एक सीनियर लेक्चर है, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है कि न्यू ईवीज आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल. सो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो है ये अभी लो प्राइज्ड ईवीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं इनटू द कॉम्पिटिशन with second-hand petrol vehicles changing the calculation for buyers. Now, used petrol car ki value jo hai, ye gir sakti actually mein, because if a new EV jo hai, iski cost hoti hai around $30,000, toh buyers may reconsider paying $27,000 for 3-year-old petrol car, of course. So, this could put pressure on the prices further down the used car market. New Zealand jo hai, waise heavily rely karta hai used imports के ऊपर. used imports जो है यहाँ पे 42% of existing light vehicles fleet होती है in 2023 and almost 97% of used passenger car imports हुई थी 2025 में जो कि जापान से आई थी. so automotive industry may need to adapt to this as well because EVs जो है they still require tires, suspension work and collision repairs as well but they don't need oil changes और जो स्पार्क प्लग्स वगैरह जो होते हैं, देन एग्जॉस्ट सिस्टम मेंटेनेंस, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वर्कशॉप्स में नीड मोर एक्सपर्टीज इन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर. अगर और भी ज़्यादा ईवीज आती है तो या ऑफ कोर्स देन अडेप्ट थोड़ा करना पड़ेगा. कंज्यूमर को बेनिफिट है बिकॉज चीपर व्हीकल्स एंड लो रनिंग कॉस्ट जो है उसे जो ट्रांसपोर्ट है ये ज़्यादा अफोर्डेबल होगी. although buyers may still worry about battery life and resale value because mujhe nahi pata ki resale value kaisi hoti hai ev ki. if you have an idea yahan pe bata sakte hain. the change will take time though, it is not ki kal ko hi aisa hone wala hai. so ye future ke bare mein baat hai ki incoming few years aisa predict kiya ja raha hai ki yahan pe ek nayi hi lehar evs ki aane wali hai jisse पेट्रोल वाली गाड़ियों के प्राइसेस शायद और भी ज़्यादा गिर जाएंगे. डू यू हैव ईवी और पेट्रोल या डीजल या क्या आपकी कौन सी गाड़ी है, आप क्या प्रेफर करते हैं, आप भी लिख के भेज सकते हैं यहाँ पे.
11: Bollywood's most wanted.
8: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
14: मैं लाऊं अपना ए गेम.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वैसे क्रिस्टीन, आपका भी मैसेज आया था कि आप मालदीव जाना चाहेंगी अगर आपको टिकट मिलती है, एंड V8 होल्डन पेट्रोल आपको हमेशा से अच्छी लगती है गाड़ी को लेके. नाउ इज़ द टाइम टू पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून. वेल, कहीं पे जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये $1,000 कैश आपके बहुत काम आ सकता है. $1,000 कैश ये जीतने का मौका है, इस ड्रॉ में शामिल होने का मौका है. आपको करना क्या है? दिस $1,000 कैश इज़ फ्रॉम फॉर्च्यून, जिनके होल ग्रेन्स होते हैं, एसेंशियल विटामिंस होते हैं फॉर्च्यून के ग्रेन्स में, एंड इट फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल. सो फॉर्च्यून की ओर से $1,000 कैश आपके नाम हो सकता है. सो आपको फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर, FORTUNE. फॉर्च्यून की ये स्पेलिंग है. सो फॉर्च्यून स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599. आपके पास 5 मिनट का समय होगा, तो आपका 5 मिनट जब शुरू होगा तो आपको यहाँ पे मैसेज करने हैं 5599 पर, एंड जैसे ही कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं प्ले करूँगी तब से आपका 5 मिनट शुरू हो जाएंगे. आप कितने भी मैसेजेस कर सकते हैं, 10, 20, जो भी आपकी आपसे बनता है. बट रिमेंबर, जब भी 5599 पर आप मैसेज करते हैं, बिकॉज एक शॉर्ट कोड नंबर है, तो स्टैंडर्ड करियर रेट्स डू अप्लाई. इस कॉम्पिटिशन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी. इफ़ यू गो टू hum.rover.nz, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. सो फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए, 5599 इज द नंबर.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Simplicity's lowered KiwiSaver fees again.
3: Mostly clear overnight with a low of 13 degrees. On the northern, it's heavy from Northcote Road to Uniwa Road. Town to Silverdale, 49 minutes to Massey, 21. On the southern, heavy heading north from East Tamaki Road to Green Lane. Town to Manukau, 40 minutes to Drury, 1R6. On the southwestern, heavy from Roscommon Road to Mangere Bridge and Massey Road through to the southern.
2: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
4: The first time Glenn saved lives was a Thursday. He closed his eyes to see how many dog breeds he could name. 22. Not bad, Glenn. Not too bad. Sit back and save lives. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
5: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
6: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
7: दिवाली आई खुशियां लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 846-9934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.
8: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
9: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
11: PNC Supply.
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
15: Let's go.
14: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
16: 439 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. ओवर द वीकेंड भी हमारे काफ़ी अनाउंसर्स आपके साथ यहाँ पे शामिल हो जाते हैं. कल सुबह वैसे अभी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे अविनीत एंड सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में आपका साथ वो यहाँ पे देने वाले हैं. वैसे कल 56 फीजी इंडिपेंडेंस डे है तो इसके बारे में भी वो बातें करने वाले हैं एंड बहुत सारी इसको लेके वो फीजी के बारे में कुछ क्विज एंड ट्रिविया जो है ये कल सुबह वो आपके साथ यहाँ पे करने वाले हैं. ऑल्सो यहाँ पे उस समय पर 11 बजे देसी ब्लिट्स शाउट आउट जो है देसी बिज शाउट आउट ये भी रहता है. उसमें क्या होता है कि अगर आपका होम बेस्ड बिजनेस है तो उस समय पर आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं एंड अगर वो उसमें अप्रूव होता है तो आपको शाउट आउट ज़रूर मिल सकता है. सो यस, कल अभी को सुनाना भूलेगा जो कि कल सुबह आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पे वैसे जिकाश शामिल हो जाएंगे एंड वो भी काफ़ी टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेके आते हैं. बहुत सारे सवाल वो भी आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं एंड देन सैटरडे रात को यहाँ पे आपके लिए पार्टी सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं जहाँ पे कुछ मैशअप्स, कुछ रीमिक्सेस एंड कुछ लोकल आर्टिस्ट के रीमिक्सेस भी आपके लिए यहाँ पे प्ले होते हैं.

4:45 एट द मोमेंट हो चुके हैं, 15 मिनट बाकी है 5 बजने में. 5 बजे पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो जाएगा. एंड कुछ और कॉम्पिटिशन्स जो है ये भी एक्चुअली में आपके लिए शुरू हो जाएंगे पावर ड्राइव एट 5 में. लेकिन फिलहाल एक्चुअली में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक पढ़ी है कैट को लेके. वेल आई एम नॉट श्योर कि आप कैट पर्सन है डॉग पर्सन है, बट जापान में यू नीड अ कैट्स सिग्नेचर व्हेन यू अडॉप्ट इट फ्रॉम अ शेल्टर. तो जब भी कोई शेल्टर से कैट को अडॉप्ट करता है तो कैट के सिग्नेचर इज़ मस्ट. अब आप पूछोगे कैट के सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं. सो कैट अडॉप्शन जो जापान में है वहाँ पे न्यू फैमिली मेंबर गेट्स टू लीव देयर ओन सिग्नेचर विद देयर पॉ जो जेंटली प्रेस होते हैं ऑन टू द पेपर वर्क टू क्रिएट अ टाइनी पॉ प्रिंट. जैसे हम अंगूठा लगाते हैं तो वैसे ही कैट भी अपने अंगूठा लगाते हैं, वो अपना पॉ लगाते हैं वहाँ पर. ये एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है जापान में फॉर अडॉप्टिंग अ कैट, बट रादर एक बहुत ही सिम्बॉलिक रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं. सो दैट उनकी एक नई शुरुआत हो रही है तो वहाँ पे वो अपने अंगूठे के साथ अपनी जो शुरुआत है पॉ के साथ एक्चुअली में अपनी शुरुआत जो है वो नए घर में करते हैं.

यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You went to Big Boss,
2: right? I went there once.
3: That was for Nikamma, na?
2: For Nikamma, yes.
3: So, what do you think about Salman Khan?
2: मैंने सलमान सर के एक गाने का कवर किया था. मुझे उन्होंने कहा था कि तुमको गाना गाना है एक. तो ऐसे ठीक है. मैंने बहुत politely ऐसे उनको पूछा था कि आप please गाएंगे मेरे साथ. तो उन्होंने गाया भी था.
0: Shirley Setia, unfiltered. Catch the full conversation on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 20.4 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. इट्स सनी ब्राइट डे आज का वैसा गया. सैटरडे ऐसा ही वेदर रहेगा. संडे को हल्की सी बारिश होने के चांसेस हैं.
2: Drive show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: पांच बज के तीन मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू गुड इवनिंग कह सकते हैं, बिकॉज बाहर तो देख के आफ्टरनून ही लगता है, बट इट्स एक्चुअली इवनिंग. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हफ्ता आपका कैसा गया है? उसमें आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपका साथ यहाँ पर ज़रूर दे रही हूँ. बाय द वे, बहुत सारी टीम्स यहाँ पे, बहुत सारी गेम्स जो है ये होने वाली है. IDC की तो सेमीफाइनल्स खेल अनाउंस हो चुके हैं. हमने सोशल मीडिया पे फुल गेम्स का पोस्ट किया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं. आने वाले दिनों में अभी अक्टूबर में क्रिकेट सीजन भी शुरू हो जाएगा. इंडिया टीम विल बी हेयर प्लेइंग अगेंस्ट ब्लैक कैप्स, एंड ऑल्सो फुटबॉल टीम भी यहाँ पर आने वाली है. सो इंडिया की फुटबॉल टीम एंड ऑल वाइट्स के बीच में भी जो मैचेस है ये शुरू होने वाले हैं. एंड इसको लेके और भी बातें, वैसे हम मंडे से कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आपके साथ हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो गेम्स हैं ये अनाउंस की थी मार्क मिचेल ने एज़ पार्ट ऑफ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया था न्यूजीलैंड में, कि स्पोर्टिंग इवेंट्स काफ़ी होंगे टू सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स बिटवीन बोथ द नेशंस. सो येस, इंडिया की फुटबॉल टीम विल बी हेयर, ऑल वाइट्स के साथ खेलने वाली है. इंडिया की क्रिकेट टीम विल बी हेयर, ब्लैक कैप्स के साथ खेलने वाली है. एंड और भी बहुत कुछ, बिकॉज समर टाइम है, तो समर टाइम पे स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं. एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, तो वैसे दिस पर्सन इज़ वेरी स्पोर्टिंग. आफ्टर 28 ईयर्स ये फाइनली अपने घर पहुँचा है. सो दिस मैन, इसने एक मिशन लिया. सो 29-year-old मैन इन 1998, ही वॉज 29-year-old उस समय पर. सो ही लेफ्ट हिज हाउस चिली में ऑन 1 November 1998, और उसने एक रूल बनाया कि वो पूरी का पूरा जो रास्ता है पूरी दुनिया कवर करने वाला है. नो ट्रांसपोर्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड नो गोइंग होम अनटिल ही अराइव्ड ऑन फुट. पाँव पे ही वो वापस आने वाला है, नहीं तो वो नहीं पहुँचेगा. उसको लगा, ही थॉट 36,000 miles वुड टेक अबाउट 12 years, लेकिन ज़्यादा लग गए, 28 years लग गए. सो देन केम 2 months इनसाइड द जंगल. वो काफ़ी समय रहे एक्चुअली में. सो बिकॉज जब जंगल के बीच में से वो निकले तो वहाँ पे कोई रोड नहीं थी, कोई टाउन नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी. ही लिटरली स्पेंड 2 months वॉकिंग थ्रू इट, शेयरिंग द पाथ विद क्रिमिनल गैंग्स एज वेल. देन मार्च 2006 में ही स्टेप्ड ऑन टू द फ्रोजन स्ट्रेट. ही क्रॉस फ्रॉम अलास्का टू साइबेरिया, जहाँ पे ही मूव्ड सी आइस के थ्रू गया. वो 14 डे का रूट उसने कवर किया, 58 माइल्स वाइड का, एंड दैट वाज आइस के थ्रू वो सारा का सारा गया. देन ही वॉक्ड इनटू रशिया विद नो स्टैम्प इन हिज पासपोर्ट, बिकॉज देयर इज़ नो बॉर्डर पोस्ट आउट ऑन द आइस. सो गार्ड्स ने उन्हें डिटेन किया एंड हिज पार्टनर, एंड कोर्ट ऑर्डर किया, कोर्ट ऑर्डर्ड हिम आउट ऑफ द कंट्री. दो 5-year बैन वुड हैव एंडेड द होल वॉक, बट उन्होंने अपील किया, अपील जीता इन May 2006, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन. एंड देन रशिया, ईरान वुड नॉट लेट हिम इन, एंड टेकिंग अ फेरी वुड ब्रेक हिज ओन रूल्स. सो 2024 में ही स्वैम इंस्टेड, सो पुलिंग अ सप्लाई रैफ्ट बिहाइंड हिम फॉर 31 days. सो कजाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड है एंड टू ऑफ द कंट्री स्विमर्स जो थे वो इसके साथ गए थे. एंड देन देर वॉज यूरो टनल जो है उसने रिफ्यूज़ किया टू लेट हिम वॉक द सर्विस टनल, कि इट वॉज क्लोजिंग और वो बहुत रिस्की है. फ्रांस ऑल्सो ब्लॉक्ड स्विमर्स फ्रॉम लीविंग द कोस्ट. उसकी टीम ने स्पेंड किए मंथ्स आस्किंग फॉर द परमिशन. ही स्वैम 20 आवर्स ओवर 3 डेज. 3 दिन में 20 आवर्स बंदे ने स्विमिंग की है. एंड देन ही वॉक्ड इन टू शेक्सपियर बीच 5th October 2026. एंड या फाइनली अपने घर के बाहर वो पहुंच चुका है. आफ्टर 28 ईयर्स वो अपने घर के बाहर पहुंचा है ऑन फुट. और अपना रूल उसने नहीं तोड़ा, उसने कोई फेरी नहीं ली, किसी बोट पे ट्रैवल नहीं किया, उसने कोई गाड़ी पे ट्रैवल नहीं किया, साइकिल तक पे भी इस बंदे ने ट्रैवल नहीं किया.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली

0: गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: Hum, accurate traffic.
4: Kitchen Mania free installation.
5: Mostly clear overnight with a low of 13 degrees on the Northern Heavy from Esmond Road through to the Harbour Bridge. Tab Silverdale taking 41 minutes to Massey 20. On the Southern Heavy from East Tamaki Road to just past Green Lane and also heavy around Drury in both directions with roadworks there. Town to Manukau 32 minutes to Drury 52. The southwestern slow from Roscommon Road to Mangere Bridge.
4: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
9: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
10: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
11: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश, साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
12: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo, or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का वक्त आ चुका है। सो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इसमें आपको अभी मौका मिल रहा है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर के ड्रॉ में शामिल होने के लिए। यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली। एंड इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इनडेलिबल होम्स की ओर से, क्योंकि ये फ्यूल वाउचर आपको मिल रहा है, तो IH यानी कि इनडेलिबल होम्स, IH स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पर यू कैन विन $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर। एक हफ्ते में आपका कितना फ्यूल लग जाता है, कितना फ्यूल आपकी गाड़ी खा लेती है एक हफ्ते में, अगर आपकी गाड़ी फ्यूल खाती है तो। अभी तो EVs भी है, सो वो भी मैसेज करके आप यहाँ पे बता सकते हैं. बट आई हैच स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जो है ये आपके नाम हो सकता है. इस कॉम्पिटिशन की टर्म्स एंड कंडीशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, hum.rover.nz पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेगी. दिवाली स्पेशल पे वैसे मंडे से कुछ और प्रोग्राम्स भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं. एक कॉम्पिटिशन लेके आ रहे हैं आपके लिए एंड एक और प्रोग्राम है जिसमें यू कैन एक्सपीरियंस द टाइमलेस स्टोरी ऑफ रामायण. सो मंडे ऑनवर्ड्स हम आपके लिए रामायण एक गाथा लेके आ रहे हैं. एक स्पेशली प्रोड्यूस सीरीज रहेगी, 1 to 2 मिनट की स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स है जिसमें विल टेक यू थ्रू मेमोरेबल स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड मोमेंट्स फ्रॉम रामायण. एंड ये प्रेजेंट रहेगी अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स थ्रू आउट द डे मंडे ऑनवर्ड्स. तो डिफरेंट डिफरेंट शोज में आपको ये जो सेगमेंट्स है ये सुनने को मिलेंगे. तो सुनते रहेगा, ये भी आपके लिए मंडे से शुरू होने वाला है. मंडे से कुछ और भी शुरू होने वाला है. इलेक्शन स्पेशल अगर आपने कल का मिस आउट किया है, जहाँ पे लेबर कैंडिडेट खड़ग सिंह जो कि ताकरेनी के कैंडिडेट है उनसे जो बातें की अबाउट स्मॉल बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो एंड ये सब बातें जो है अगर आपने मिस आउट की है तो आप ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा. न्यूज़ में अपॉर्चुनिटी पार्टी के बारे में भी काफ़ी बातें हो रही है एंड नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटी पार्टी से भी हम बात करने वाले हैं, उनकी पॉलिसीज़ को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं. वैसे भी इस बार तो 17 पार्टीज रजिस्टर हुई हैं.
15: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
17: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम.
15: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 5:28 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड आते हैं आज के सवाल पे। बहुत समय हो चुका है ऐसा कोई सवाल पूछे तो आज हो जाए, आज वैसे भी फ्राइडे है। सवाल आज का ये है कि ऐसा क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव व्हेन एम्प्टी, जब ये खाली है तो एक्सपेंसिव है, एंड वर्थलेस है व्हेन फुल, ये क्या है? और इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज मेरे पास जो आंसर था और उसके बाद मैंने कहीं पर सर्च करके देखा तो दे आर एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स टू दिस। सो आप बताइए आपको क्या लगता है कि ये क्या है। इट कैन बी एक्सपेंसिव व्हेन एम्प्टी, यूजली क्या होता है कि जब चीज़ कहीं पे भरी होती है तो वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है, खाली चीज़ तो वर्थलेस होती है, लेकिन इसका उल्टा है, एक्सपेंसिव एंड एम्प्टी एंड वर्थलेस व्हेन फुल, मतलब ये उल्टा है इसका। और इसके डिफरेंट आंसर्स एक्चुअली में हो सकते हैं, हमारी डेली लाइफ से कंसर्निंग इसका आंसर भी हो सकता है। मेरे पास एक आंसर है जो कि डेली लाइफ से कंसर्न्ड है, और एक तो ऐसा आंसर है इसका जो पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, टॉडलर के जो पेरेंट्स है, मतलब पेरेंट्स जो भी है, खैर उनके बच्चे कभी तो टॉडलर रहे होंगे तो पेरेंट्स को पता ही होगा, एक आंसर तो उनके साथ बहुत ही नज़दीक से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंसिव एंड एम्प्टी, वर्थलेस व्हेन फुल, मतलब ये भरा हुआ आपको कोई देगा ना, स्पेशली किसी पेरेंट्स को अगर ये देगा तो बोलेगा इसका मैं क्या करूँ, लेकिन अगर वो एम्प्टी आपको मिलता है तो इट्स क्वाइट यूजफुल बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे। क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? 5599 इज़ अ नंबर एंड यूजली टॉडलर्स के साथ बहुत कनेक्टेड है जो मेरे पास आंसर है, लेकिन और भी इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं।
1: Power Drive at 5 brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized customized designs for your dream kitchen. Are you ready? Chatbusters.
2: Thoda sa hall bana de.
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027, ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
3: Swadeha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
7: Beauty month at Bargain Chemist.
8: Mostly clear overnight with a low of 13 degrees on the northern heavy from Esmond Road through to the Harbour Bridge. Town to Silverdale taking 41 minutes to Massey 20. On the southern heavy from East Tamaki Road to just past Green Lane, and also heavy around Drury in both directions with roadworks there. Town to Manukau 32 minutes to Drury 52. The southwestern slow from Roscommon Road to Mangere Bridge.
7: Treat yourself to big bargains on your beauty favourites this beauty month at Bargain Chemist.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
16: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chili butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.
17: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
18: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. And for a limited time, take a further 10% off all sofas. Offer ends Monday. Only at Freedom.
19: The beat of Bollywood.
20: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
21: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
22: 21 मिनट बाकी है 6 बजने में और मैंने आज का सवाल पूछा है कि ऐसा क्या है जो कि एक्सपेंसिव है व्हेन एम्प्टी एंड वर्थलेस है व्हेन फुल. ऐसा क्या है? एंड जो मेरे पास आंसर था, काफ़ी लोगों ने वो आंसर यहाँ पे भेज दिया है. मैं नैपी के बारे में बात कर रही थी, डायपर के बारे में बात कर रही थी कि जब वो एम्प्टी है तो ऑफकोर्स वो एक्सपेंसिव है, एंड अगर वो फुल है तो वो किसी के काम का नहीं है, वर्थलेस है. लेकिन और भी डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स मेरे पास यहाँ पे आए हैं. मेरे पास डस्टबिन आंसर भी आया है एंड मेरे पास प्रॉमिस ये आंसर भी आया है. प्रॉमिस इज एक्सपेंसिव एंड एम्प्टी वर्थलेस व्हेन फुल. ओके नहीं पता. एंड सीडी ये भी मेरे पास आंसर आया है. या सीडी भरी होती है तो वो बिकती है जब बिकती थी. एंड या आप भी यहाँ पे भेज सकते हैं अगर आपके जहन में कुछ डिफरेंट आंसर है तो आप भी भेज सकते हैं. व्हाट कैन बी एक्सपेंसिव व्हेन एम्प्टी एंड वर्थलेस व्हेन फुल.
20: लेट्स गो
19: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
22: और कल 6 बजे के बाद यहाँ पर हमने ट्रिब्यूट दी थी नाना पाटेकर को. एंड अगर आपने वो मिस आउट किया है सेगमेंट तो आप रोवा पे जाके वो सेगमेंट सुन सकते हैं. hum.rova.nz पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेंड मेकर्स के ऊपर क्लिक करो एंड यू कैन लिसन टू द फुल एपिसोड जो कि कल आपके लिए लेके आए थे, जिसमें नाना पाटेकर के कुछ फेमस डायलॉग्स भी प्ले किए थे, उनके कुछ इंटरव्यूज़ जो है ये भी आपके लिए प्ले की थी. और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए मेन करेक्टर एनर्जी के गाने लेके आने वाले हैं. मेन करेक्टर एनर्जी एज इन की यू नो जो अपना हीरो जो हीरोइन है वो मस्त हो के वो गाना गा रहे हैं अपने फुल फॉर्म में, अनअपोलोजेटिक होके एक्चुअली में गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं. सो ऐसे मेन करेक्टर एनर्जी वाले गाने आज आप सुनने वाले हैं 6 बजे के बाद.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: थ्रोबैक का गाना भी सुनेंगे, लेकिन इस समय पर एक और भी बहुत ही बड़ी चर्चा हो रही है फिजी से जो न्यूज़ है, जो ये जो आर्टिकल है ये कंसर्न करता है अबाउट जनरल सेक्रेटरी ऑफ फिजियन टीचर्स एसोसिएशन, जिनका नाम पॉला है, एंड उनके कुछ कमेंट्स थे फेसबुक के, जिसके वजह से काफ़ी जगह पे ट्रिगर हुआ है एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला जा रहा है इन फिजी. So according to reports that was published on aaj hi ke din 9th October ko, so jo general secretary of Fijian Teachers Association hai, unhone kuch remarks diye while defending indigenous Fijian chief. He questioned ki why critics of the chiefs were living in Fiji and threatened to catch them and roast them in traditional earth oven. So इस कमेंट के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी एक्विजिशंस हैं उनके ऊपर, रेशियल के एंड थ्रेट्स ऑफ वायलेंस के भी. पुलिस कंप्लेंट हुई है, फिजीज नेशनल फेडरेशन पार्टी जो है इन्होंने लॉन्च किया है कंप्लेंट एंड दे आर कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज थ्रेट्स एज वेल. गवर्नमेंट का जो रिएक्शन इसमें, मिनिस्टर फॉर वेमेन चिल्ड्रन एंड सोशल प्रोटेक्शन शशि किरण, इन्होंने कंडेम किया है रिमार्क्स को एंड बोला है कि अर्ज किया है टू विदड्रॉ देम एंड अपोलोजाइज फॉर दिस. And also there is a call for calm as well. Education Minister jo hai, he said ki defending traditional chiefs did not justify the abusive language or threats against the fellow citizens. So in comments reported by Fiji Village, he defended his post saying it was directed at people he accused of swearing at and disrespecting the chiefs. Well, dekhte hai ki iske upar aage kya hota hai, but filhal the controversy hai, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है एंड इसके ऊपर कुछ अपडेट होगी तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे

0: Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Let's go! 3, 2, 1.
1: Trend Makers. 6:02 हो चुके हैं. ट्रेंड मेकर्स आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. एंड ट्रेंड मेकर्स में आज मेन कैरेक्टर एनर्जी गाने आप सुनने वाले हैं, एज इन की ऐसे गाने जहाँ पे अपने हीरो जो हीरोइन है ये बिंदास होके इंजॉय करके अनअपोलोजेटिक होके डांस कर रहे हैं या इस गाने पे गाना गा रहे हैं. सो या ऐसे गाने आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. आपके जहन में कोई गाना आता है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. वैसे आपके सुपर सिटी में एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है लॉन्ग वीकेंड पे. द बीयर अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आपके लिए 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चर टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं 24th एंड 25th अक्टूबर को. दो दिन का इवेंट है जिसमें रेंज ऑफ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर. इनफैक्ट बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है, जिसमें लेमन एंड स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर, बच्चों की रेस, ये सब कुछ होने वाला है. एंट्री तो फ्री रहेगी, लेकिन अगर आपको किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है, किसी स्पोर्ट्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, वो कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर या लेमन एंड स्पून में, इन सब में किसी में भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो डिटेल्स के लिए आपको कॉल करना है इस नंबर पर, प्रदीप से बात कीजिए 021-238-5948 पे. सो द नंबर टू कॉल इज 021-238-5948. अदरवाइज जब आप सर्च करेंगे द बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब का 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चर टूर्नामेंट, तो और भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी.

छह बज के छह मिनट हो चुके हैं एंड रिकमेंडेशंस के बारे में बातें करते हैं तो बहुत कुछ आया है OTT प्लेटफॉर्म्स में. अगर आपके कुछ रिकमेंडेशन है यहाँ पे आप जरूर शेयर कर सकते हैं. आई वॉज चेकिंग दिस संडे ब्रंच विद कामिया जानी. सो कामिया जानी जो है ये ओपन कन्वर्सेशंस कर रही है विद इंडियाज बिगेस्ट स्टार्स एंड जहाँ पे कुछ कन्फेशंस, सीक्रेट रेसिपीज, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ उनके एपिसोड्स हैं. एंड इसमें देर इज़ राजकुमार राव के साथ उन्होंने किया है एपिसोड. देन शी डिड विद अजय देवगन एंड काजोल एज वेल. देन यू नो विराट कोहली का जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर की जर्नी उसने कवर की है. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये. और इसके बहुत सारे एपिसोड्स ये नेटफ्लिक्स पे है वहाँ पे आ चुके हैं. वैसे आइस एज के 5 सीरीज़ भी आ चुकी है. सो इफ़ यू एंड योर फैमिली योर किड्स they want to watch something together तो Ice Age की सीरीज जो है ये आप देख सकते हैं. सो Ice Age 1 से लेके 5 तक एक्चुअली में ये भी आ चुका है, इसके एपिसोड्स भी आ चुके हैं. एंड आई वॉज चेकिंग कुछ नई सीरीज भी आई है रिपोर्ट एक्चुअली में ये मूवी आई है रिपोर्टिंग लाइव. परिणीति चोपड़ा इज़ ऑन रोल. अभी अभी उसकी एक और सीरीज आके हटी है एंड नाउ शी इज़ अनदर वन, शी इज़ बैक विद अनदर वन. रिपोर्टिंग लाइव इसका नाम है. इसमें उसने एक जर्नलिस्ट का रोल किया है संध्या का. अपने कैमरामैन के साथ वो जब जाती है तो एक सैंड माइनिंग रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करती है. सो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ स्टोरी है ये. मॉन्स्टर की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है. आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग इट. एंड आपकी कोई रिकमेंडेशन है आप भी यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जो किसी को देखना चाहिए. एंड यू नो बहुत अच्छी कोई सीरीज़ है या फिर कोई मूवी है जो आप बिंज वॉच कर रहे हैं बाकियों को भी देखनी चाहिए, शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पर. You know,

0: तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
5: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, व्हिच इज 0800-564-424।
8: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking LTRL to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
9: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
10: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo, or avocado, 2 for $2.50. Now

0: That's New World Value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं और कम्युनिटी न्यूज़ के बारे में बातें करते हैं. तो एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे 18 अक्टूबर को, ग्लोबल पावर सर्ज. ग्लोबल पावर सर्ज जो है ये मेनोपॉज के ऊपर है, एक फ्री ऑनलाइन इवेंट है दैट ओपन्स अप फर्स्ट लाइट इन न्यूजीलैंड. सो ग्लोबल पावर सर्ज डॉट कॉम पे अगर आप जाते हैं तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बिकॉज ये एक फ्री इवेंट. आपको ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, देर इज़ नो फीस, बट रजिस्ट्रेशन इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड. सो इसमें कुछ गाइडेंस जो है, कुछ फ्री प्रोग्राम्स जो है, ये है जो एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. नवरात्रि सेलिब्रेशंस भी शुरू हो रही है. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एफ मैनकाओ में नवरात्रि की सेलिब्रेशन जो है 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाली है. गरबा एंड डांडिया रास भी एवरीडे रहेगा आफ्टर कथा. श्री हनुमान मंदिर जो कि 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल में है नॉर्थ शोर में, वहाँ पे है फ्रॉम 6:15 PM डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM. श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर 7 PM टू 9 PM वहाँ पे नवरात्रि की सेलिब्रेशन रहेगी. दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वहाँ पर भी 11 से लेकर 20 तक 6:30 PM से सेलिब्रेशन रहेगी नवरात्रि की. सो गरबा डांडिया एंड हुद्दा तासा रास डेली होगा आफ्टर कथा. एंड आप भी इन सब जगह पे नवरात्रि की सेलिब्रेशन के लिए पहुंच सकते हैं.

ट्रेंड मेकर्स में आज मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं. यू नो हिस्ट्री में एक बार ये हो चुका है कि जो मैथ के टीचर थे दे एक्चुअली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कैलकुलेटर्स 1986 में. सो 1986 में कैलकुलेटर प्रोटेस्ट जो था बिकॉज ये न्यू टेक्नोलॉजी में जो टीचर्स थे उनको डर था कि लोग मैथमेटिक्स को भूल जाएंगे. इट विल चेंज हाउ स्टूडेंट्स थिंक. सो अप्रैल 1986 में स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स दे प्रोटेस्टेड आउटसाइड द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स कन्वेंशन वॉशिंगटन में एंड ओवर द ग्रोइंग यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इन स्कूल. सो एक मैथ के टीचर ने इसको लीड किया था एंड दे फियर्ड कि चिल्ड्रन कुड बिकम टू डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर्स बिफोर लर्निंग द बेसिक अरिथमेटिक देमसेल्फ. यू नो हम टेबल्स हमने कितने रटे हैं. सो एक प्रोटेस्ट साइन ऐसा भी था जिस पे लिखा था कि द बटन्स नथिंग टिल द ब्रेन स्ट्रेन्ड. सो दे आर्ग्यूड कि कैलकुलेटर्स कुड बी यूजफुल कि यूज़फुल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी उनके सामने आर्गूमेंट्स ये थे कि यूज़फुल होंगे बिकॉज वन स्टूडेंट न्यू द बेसिक्स इट विल हेल्प देम स्पेंड मोर टाइम ऑन हार्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग. नियरली 40 ईयर्स लेटर स्कूल्स आर हैविंग अ सिमिलर डिबेट अराउंड AI now, generative AI now, that how much students should do themselves, AI के ऊपर dependent नहीं होना चाहिए. So ये circle है, बार बार चीज़ें जो है ये repeat हो रही है यहाँ पर. So calculators के ऊपर debate थी and actually में अभी आपने कितना समय हो चुका होगा कि आपने खुद कोई चीज़ की calculation की है. You know टू double digit numbers में आपने कितनी बार calculate किया होगा खुद से कि इसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब आप कैलकुलेट करते हो. आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ कैलकुलेटर भी अब हम भूल चुके हैं. खैर हमारे फ़ोन में ही है कैलकुलेटर, हम फ़ोन में फटाफट कैलकुलेटर ओपन करते हैं. इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अभी तो क्या हो चुका है कि लोग AI में जाके सिंपल इक्वेशन डाल रहे हैं और आंसर ले रहे हैं. वहाँ पे भी फ़ोन में भी कैलकुलेटर ओपन नहीं अभी कर रहे हैं. सो या ये टाइम पर टाइम होता रहता है एंड नाउ AI के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ डिबेट्स हो रही है.

0: Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: Hey ChatGPT, Diwali aane wali hai. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनुको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: Accurate traffic.
5: Kitchen Mania free installation.
6: Mostly clear overnight with a low of 13 on the northern town to Silverdale, just half an hour heavy towards the Harbour Bridge from Northcote Road. To Massey, 16 minutes on the southern. We've got reports of a northbound crash affecting traffic by Highbrook Drive, heavy north of there from Luke Street to Green Lane. Town to Manukau, 23 minutes. Drury, 35. Southwestern's heavy from Puhunui Road to Mangere Bridge.
5: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
7: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
9: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
12: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
11: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
13: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
14: Let's go! 3, 2, 1!
15: Trend Makers.

was the message, eh?

ट्रेंड मेकर्स में मेन करेक्टर एनर्जी गाने आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं और मेरा वक्त तो चला है यहीं भी आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूँ हमारे पॉडकास्ट सुनना ना भूलेगा। बहुत मेहनत के साथ ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करते हैं अनफिल्टर्ड के, कई बार बहुत सारे गेस्ट्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं, आफ्टर क्वाइट चैलेंजेस के बाद ये पॉडकास्ट आपके लिए हम रिलीज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि ये पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके पास रोवा ऐप है जो होनी चाहिए, तो वहाँ पे जाके अगर आप सर्च करते हैं अनफिल्टर विद सैंडी एंड रूज़बे या फिर स्पॉटिफाई पे या एप्पल म्यूज़िक पे अनफिल्टर विद सैंडी एंड रूज़बे, एंड वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एपिसोड्स मिलेंगे जो हमने इस साल किए हैं। एंड तकरीबन इस साल में ही हमने आई थिंक 18 एपिसोड्स किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, रेंज ऑफ टॉपिक्स को लेके। तो आप सुनेगा एंड उसमें से आप देखिएगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि अनफिल्टर्ड में कवर होना चाहिए, जिसके ऊपर डिटेल में बातें होनी चाहिए, ज़्यादा बात जिसके ऊपर नहीं होती है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए एंड हम कोशिश करेंगे कि उसके किसी स्पेशलिस्ट को यहाँ पे लेके आए। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें हम किसी स्पेशलिस्ट को लेके आते हैं, जैसे कि जो हमने विल्स के ऊपर, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर किया है पॉडकास्ट, उसमें हम पब्लिक ट्रस्ट के एक मेम्बर को लेके आए थे। सो या गो एंड लिसन टू दोज एपिसोड्स एंड लेट अस नो आपको कैसे लगे। उसमें सेलिब्रिटी एपिसोड्स भी आपको मिलेंगे, जैसे शर्ली सेठिया का एंड और भी ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ का। इसी नोट पे अब मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मेरी और आपकी मुलाकात अब मंडे को होने वाली है कॉफ़ी ब्रेक में 3 बजे, देन ड्राइव शो में विद रूज़बे 4 बजे।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: Happy Hour on Hum.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
10: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
11: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
12: Welcome to peak hour commute by.
11: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
12: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
11: Yeah, that sounds like me.
12: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
11: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
13: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
15: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
14: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
15: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
14: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
15: 100% authentic and pure as mother's love.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
16: Kabhi bhi, kahin bhi.
0: Happy Hour on Hum.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
0: Hum.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
3: तो क्या करें?
0: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: शुरू उन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: From climate change to a lack of loose change. From small changes to changes in global power. Change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News. Change is in the air.
2: Mytutan Mega Henderson अब weekdays पे सुबह 6 बजे से खुला है। Building supplies, timber, power tools और trade essentials सब कुछ site पे जाने से पहले ही उठा लो। Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. Mytutan Mega Henderson.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: What could I be? A teacher, a scientist, a builder. But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
5: Glad I got my enrollment sorted the other day.
6: See, Mai, I told you it was easy.
7: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
6: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
7: Really? What if I miss it?
6: Well, your vote won't count for this year's election.
7: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
8: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune. Bring home the fortune.
4: White separated. Pockets checked. Cold wash. Gentle cycle. Powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
1: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
2: बुक नाउ विद सन टूर्स।
1: कॉल करें 0800 478686।
10: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

भी हो सकता है ये प्यार तो

0: listen up, yo. It's Valentine's Day.
1: Groove.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड। Night Fly.

अंडा अंडा अंडा अंडा। हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Night Flight on Hum.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट। मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है, तो 111 पर कॉल करें।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब।

0: Night Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.

0: बेस्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Budget gaane.

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट ISIC.co.nz.
3: Fly.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: करदा है इनिया मेनिया गल्ला ते तू लड़दा

0: Night Flight on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
0: Playing

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: मीडिया वॉइस कंप्लेंट्स, हाउ कैन आई हेल्प?
3: या हेलो,
2: हाय
3: हाय हाय, कैन यू गाइस टेक अ रेडियो जिंगल आउट ऑफ माय ब्रेन?
2: ओह, यू मीन लाइक अ जिंगल extraction. It's our job to put advertising in there.
3: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
2: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
3: Great. Sing it to me.
4: Advertise with
5: Media Works.
4: New Zealand listens to us.
6: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi.
7: Mast malang jo.
0: Saturday Breakfast on Hum. You're listening to Avineet.
8: क्यारा बुला सलाम नमस्ते सस्रीकाल, मैं हूँ अभी आपके साथ में और जुड़ गया हूँ, लेकर आया हूँ अपने साथ में ढेर सारी खुशियाँ जो बांटने को है। और अब जबकि आज है 10 तारीख अक्टूबर, ऐसे में आपका साथ रहेगा हमारे साथ में अभी से लेकर ठीक 12 बजे तक। और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। आप देश में हैं, बाहर निकल चुके हैं, काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप विदेश में हैं, सफ़र कर रहे हैं, रोवा के जरिए हमारे साथ में जुड़े हैं, कनेक्टेड है, आपका खास स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो। और जबकि वीकेंड है तो आपका साथ देते रहेंगे, कुछ एंटरटेनिंग बातें भी होगी आपके साथ में, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन है बांटने को इसके साथ में। जबकि आज 10 तारीख अक्टूबर है तो फिजी अपना 56th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रही है आज, इसके बारे में भी ढेर सारी बातें हैं बताने को, ट्रिविया है जो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं वीकेंड पर, जिस पर और भी खुलकर बातें करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी समय इशारा कर रही है कि 6 बज चुके हैं और आपको गुड मॉर्निंग कहने का वक्त है, ऐसे में हमारी ओर से आपको अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग ओवर द वीकेंड और आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे। अगर जो आप एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े हैं घर से हमारी तरह, तो हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। मैं हूँ अभी, ढेर सारा प्यार लेकर आया हूँ आपके साथ में बांटने के लिए और आप ही के साथ में दिन की शुरुआत कर रहा हूं सैटरडे ब्रेकफास्ट शो के साथ में।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, जबकि आज है 10th of October, तो ऐसे में आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और चलो एक नज़र आपके लिए वेदर पर भी डाल लेते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि किस तरह का दिन आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बताया गया है, खासकर शुरुआत करते हैं ओकलैंड CBD के साथ में पार्टली क्लाउडी, साथ में चेंस ऑफ अ लाइट शावर, साथ में रात को भी काफ़ी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो सनराइज है इसी आवर पर 6:43 AM आप सनशाइन को देख सकेंगे, महसूस कर सकें। और इसके साथ में जो दिन का टेम्परेचर है 20 degrees तक रहेगा एंड ओवरनाइट 13 degrees। तो ये था ओकलैंड CBD के लिए वेदर फोरकास्ट। इसके अलावा अगर जो नेशनली देखें तो काफ़ी जगहों पर ऐसा ही वेदर टाउन्स एंड सेंटर्स में बताया गया है। हैमिल्टन साथ में रोतरुआ, तोरंगा हुआ, तोपो साथ में न्यू प्लिमथ और वेलिंगटन के लिए खासकर ऐसा ही वेदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और साथ में साउथ आइलैंड में भी अगर जो देखें तो बीच बीच में आपको सनशाइन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लाउड्स और बारिश भी मिलेगी आज एक ही दिन में। ऑल ऑफ दिस आपके लिए है। और आप अगर जो हमें हैमिल्टन, रोतरुआ, साथ में गिस्बन, फांगरे या फिर तोपो या फिर वेलिंगटन जैसे शहरों में आप हमें सुन रहे हैं, पामर्स्टन नॉर्थ में आप है, क्राइस्टचर्च में आप है, साथ में आप डनीडन में है, क्वींसटाउन में है, हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम टू द शो। दिस इज़ ब्रेकफास्ट शो, आप 104.2 FM। अगर जो आप रोवा पर हमें सुन रहे हैं तो मैं हूँ अवि, और ढेर सारा बातें आपके साथ में करने को है। आप भी निकल पड़े हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हैव अ वंडरफुल डे एंड थिंक ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक।

0: इट्स सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जो आपका फेवरेट हिंदी डायल है. ऐसे में अभी मैंने न्यूज विभाग के साथ में चेक किया कि कोई ऐसी समाचार या न्यूज जो ओवरनाइट हुई है, तो उन्होंने बताया अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है. लेकिन आज का जो पहला समाचार आपके लिए रहेगा सुबह 8 पर रहेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ जबकि 7 नवंबर को इलेक्शंस होने को है तो पार्टीज आज कहाँ कहाँ पर कैंपेन करेगी और कैसे करेगी, बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
3: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
3: बस इतना ही.
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
6: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Diwali aa rahi hai aur Fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Rothkill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi 2 Fortune ya Simply products khareediye aur jeetiye $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
8: द अल्टीमेट प्रो आईफोन, आईफोन 18 प्रो विद अ बिग लीप इन बैटरी लाइफ, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and 4 gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
9: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
10: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: दैट्स राइट ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम मैं हूँ आपका साथी अभी अगर जो आप थक गए हैं हैरान हो गए हैं परेशान हो गए हैं तो आपको उम्मीद तब भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको कभी कभी लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता तो याद रखिएगा ऐसे पल पर कि जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है उसी मोड़ पर कहीं ना कहीं तब आपके साथ में कोई ना कोई चमत्कार हो सकता है।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, ये है Saturday Breakfast Show अवि के साथ में और सुबह का जो पहला मैसेज है आ ही गया है. क्वीन ने भेजा है गुड मॉर्निंग अवि, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. आप भी हमें सुन रहे हैं, अपना मैसेज हमारे पास में शेयर करना चाहते हैं, 5599 इज द मैजिक नंबर. इसके साथ में आज 10th of October है तो फिजी का 56th इंडिपेंडेंस डे भी है, स्वतंत्र दिवस आज मना रहे हैं. काफ़ी लोग खुश होंगे. और इसके अलावा अगर जो 10th October आपका जन्मदिन भी है तो आपको भी शामिल कर लेते हैं. जबकि मणिबेन लखन राणा जी माउंट रोस्किल की हैं, ये अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके साथ में बलवान सिंह लोहन जी है मेसी से, ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में इस खुशी के मौके पर आपको ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं, आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. जबकि दोनों बड़े ही अच्छे मेंबर है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के, तो चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये जो प्यारा से मैसेज है सुबह सुबह आया है कि मणिबेन लखन राणा जी और साथ में बलवान सिंह लोहन जी ये आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो 10th October है, आपके फैमिली में किसी की जन्मदिन है, बर्थडे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई और खुशी का मौका है जिसकी खुशियां आप हम पर हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, तो 5599 पर ज़रूर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं.

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी, अभी आपका साथ दे रहा हूँ और 12 तक ये कारवा सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ में। और बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है पोर्ट वेकातो से, विम ने लिखा है, भाई राम राम, आई वांट टू विश माय ब्यूटीफुल एंड केयरिंग वाइफ अ वेरी हैप्पी 16th वेडिंग एनिवर्सरी टू अस। तो अ लवली डे फॉर यू विम, साथ में अपनी पत्नी के साथ में, अपने वाइफ के साथ में आज का दिन आप सेलिब्रेट करने वाले हो, मार्क करने वाले हो 16th वेडिंग एनिवर्सरी। तो ऐसे मौके पर हमारी ओर से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। और ये जो अगला गाना है इस खुशी के मौके पर आपके लिए तो बनता ही है।
1: तुम सा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

0: हम पर इसमें यह भी कीपिंग यू कंपनी, जबकि 20 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। ऐसे में आपको याद होगा 7 नवंबर को जनरल इलेक्शंस होने को है न्यूजीलैंड में, और इसके लिए आपको रजिस्टर होना है 25 अक्टूबर से पहले, ताकि आपका जो मत है, वोट है, ये काउंट कर सके। तो ऐसे में जबकि आज कैंपेनिंग पूरे जोर शोर से चल रहा है, नेशनल, लेबर और ग्रीन पार्टी आज ऑकलैंड में कैंपेन करेगी, तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन अपने डिबेट के बाद में एक साथ आज जो ब्लडी स्लो कप है ईडन पार्क में आज रात को इसको देखेंगे साथ में। और इसके साथ में जो एनजेड फेस्ट लीडर है विंस्टन पीटर्स, ये आज इन्वरकागिल में रहेंगे, एक पब्लिक मीटिंग होस्ट करेंगे इस दिस आफ्टरनून। तो ये कुछ जो मूवमेंट है नेशनल साथ में लेबर और ग्रीन पार्टी को लेकर, और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है इलेक्शन से संबंधित, आपके लिए जो न्यूज़ अपडेट्स है लेकर आते रहेंगे। लेकिन आज की इनकी जो आइटनरी है कुछ इस तरह से है कि क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन साथ में ब्लडी स्लो कप देखेंगे ईडन पार्क में आज रात, और इसके अलावा एनजेड फेस्ट के जो लीडर हैं विंस्टन पीटर्स इन्वरकागिल में रहेंगे, पब्लिक मीटिंग होस्ट करेंगे। तो आपके पास में कुछ सवाल रहेंगे, जबकि थर्सडे को एक स्पेशल एडिशन आता है हमारे हम पर, जहां पर सेंडी और रुजबे लेकर आते हैं कोई एक पार्टी लीडर को या फिर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव को, और उनसे बातें होती है। तो अगर जो आपके पास में भी कोई सवाल है इनके लिए, तो आप 5599 पर भेज सकते हैं, ताकि आपके जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल सके। तो इलेक्शन यह है, एक इंपॉर्टेंट यह है हमारे लिए, आपके लिए, तो समझदारी के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में हमको वोट करना तो ही है।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स,
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब, ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबी।
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी, अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुजबे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
6: The right support can make enrolling and voting easier. Ask someone you trust to help you enroll, find information, and plan how you'll get to a voting place. When you're there, they can also support you to cast your vote behind the voting screen. However you're supported, you make the decisions. Find out more at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Bunnings are driving great value on auto essentials with BarsBugs 1-litre windscreen cleaner concentrate only $10, or Armor All 1-litre car wash just $7.98. Head in store or online for even more great value. Bunnings
8: Warehouse. Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
9: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। आप भी अपने सुबह की पहली कॉफी या चाय का मजा ले रहे हैं, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, विश करते हैं हैव अ वंडरफुल डे। और अगला तरह ना आपके लिए

पर इट्स 9 अवे फ्रॉम 7 और मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ। आपको नेक्स्ट आवर पर बताऊंगा आपके आसपास आज क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर जाकर आप कुछ नया इंटरेस्टिंग देख सकते हैं या फिर जाकर अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जबकि आज है 10th of October, तो फिजी का 56th इंडिपेंडेंस डे भी है और आपको भी विश करते हैं हैप्पी फिजी इंडिपेंडेंस डे। अगर जो आप फिजी से हैं और आज का दिन आपके लिए मायने रखता है तो आपको हैप्पी फिजी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और 8 पर आज सुबह की जो पहली समाचार ये आपके लिए रहेगी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
2: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
3: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
2: Yeah, that sounds like me.
3: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
2: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
4: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
5: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
6: Bollywood's biggest hits.
7: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
8: Saturday breakfast on Hum.
9: Yo,
7: you're listening to Avineet.
10: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में। और समय की ओर देखते हैं तो सुबह के 7 बज चुके हैं, तो हमारी आवाज़ भी आप तक आपके गाड़ी के रेडियो से आ रही है क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं। आपको खास स्वागत करते हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है, ये इज़ द वीकेंड और ढेर सारी बातें आपके साथ में इस आवर पर होगी। या फिर आप घर पर हैं, रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, या फिर आप विदेश में हैं, आप रोवा के साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप साथ देते रहें एंड आज का जो सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है आपके साथ में चलता रहेगा, ये सिलसिला कारवा टिल 12, तो 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ऐसे में इस आवर पर थोड़ी देर में थोड़ी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं क्या कुछ ओकलैंड में हो रहा है जिसमें आप जाकर भाग ले सकते हैं, व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग अराउंड यू, ताकि आप भी अपने वीकेंड को अच्छी तरह से प्लान कर सकें। आज है 10th of October, ऐसे में आपका भी जन्मदिन है, आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। आप हमें सुन रहे हैं या फिर आपके किसी चाहने वाले की या फिर आपके फैमिली में किसी का जन्मदिन है जिसकी खुशियां आप हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, तो 5599 इज़ द नंबर। और इसके अलावा अगर जो आप सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना चाहते हैं हमारे पास में, जी हाँ, प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप हमारे पास में अपना जो टेक्स्ट है भेज सकते हैं। मैं हूँ अभी और विश कर रहा हूँ आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

0: हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मालूम
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ जबकि 7:08 हो चुके हैं। तो हमने कहा था कि कुछ बताएंगे कि कहाँ आप जाकर अपने फैमिली के साथ में अपने बच्चों के साथ में आज कुछ कर सकते हैं। तो कनेक्ट फोर टूर्नामेंट ये है वेताकरे सेंट्रल लाइब्रेरी में जो कि सिचुएटेड है त्रिरत्नवी स्ट्रीट हेंडरसन ओकलैंड में। तो आज यहाँ पर 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक ये जो टूर्नामेंट है कनेक्ट फोर टूर्नामेंट ये चलेगा जहाँ पर आपको सिखाया भी जाएगा कि इस गेम को खेलते कैसे हैं और कैसे आप इसके जो टेक्निक्स है स्किल्स है या फिर जो मूव्स है ये आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे एक प्लान बनाकर आप इस गेम को खेल भी सकते हैं। तो एक थोड़ा सा सोचने वाला गेम है जहाँ पर आप स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे और साथ में फोर्थ थिंकिंग के बारे में भी सोचेंगे एंड हाउ टू कम अप विद अ प्लान। तो ये जो प्रोग्राम है ये खासकर जो बच्चे हैं 14 ईयर्स से नीचे होने चाहिए इनके एज, इनके लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा। तो आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को कुछ आज एंटरटेनमेंट दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कनेक्ट फोर टूर्नामेंट के लिए वेताकरे सेंट्रल लाइब्रेरी त्रिरत्नवी स्ट्रीट हेंडरसन में जाना होगा जहाँ पर 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक ये जो प्रोग्राम है चलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली ये बिल्कुल मुफ्त है लेकिन इसके लिए बुकिंग की ज़रूरत है, इसीलिए आपको ईमेल करना होगा wetakrecentral.library@oaklandcouncil.govt.nz और यहाँ पर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि टिकट एक ज़रूरी है जो आपको चाहिएगा लेकिन कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त है। और अगर जो आप सोच रहे हैं आपके बच्चे हैं अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज, एक नया गेम विदाउट अ डिवाइस आप सिखाना चाहते हैं उनको, तो बिल्कुल एप्ट रहेगा आपके लिए और बुकिंग करके ही तब जाइएगा। इसके साथ में हमारा साथ दे रहे हैं जितेन और साथ में कृष्ण हैं, ये हमें सुन रहे हैं। आपने लिखा गुड मॉर्निंग अभी भाई, थैंक यू सो मच जितेन एंड कृष्ण, आप काम पर है हमें सुन रहे हैं हम के साथ में आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे मुझे याद आया कोई और है जो काम पर है लेकिन हम के साथ में अभी जुड़ा हुआ है एंड यू आर वर्किंग थ्रू योर शिफ्ट लेकिन हम पर आप म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम एंजॉय कर सकते कर रहे हैं। तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में मैसेज करें।

0: मेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz।
8: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
9: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281

फैमिलीज यहाँ पर थी और कैसे उनके बच्चे क्या क्या गेम्स खेला करते हैं, तो पीछे समय में आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि उस समय तो शायद डिवाइसेस नहीं थी, इसीलिए जो यूनिक गेम्स था, किस तरह से ये अपने आपको आउटडोर्स ऑक्यूपाइड रखते थे, बिजी रखते थे, किन किन गेम्स के साथ में, वो सभी गेम्स डिस्प्ले पर रहेंगी। और आपको सिर्फ जाना होगा बेकनहेड लाइब्रेरी एट द कॉर्नर ऑफ रविनी रोड एंड हिनेमोआ स्ट्रीट, बेकनहेड, ओकलैंड में। यहाँ पर आज 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये सभी कुछ रहेगा, जहाँ पर आप अपने बच्चों को बैक इन दी यस्टरडेज ले जा सकते हैं, और इन गेम्स के द्वारा यानी कि बच्चे इन्जॉय भी करेंगे, लेकिन एक नया गेम भी इनको देखने को मिलेगा कि कैसे पुराने समय में और बच्चे विदाउट डिवाइसेस खेला करते थे। तो ये भी एक सीख इनके लिए रहेगी एट बेकनहेड लाइब्रेरी, जो कि है एट द कॉर्नर ऑफ रविनी रोड एंड हिनेमोआ स्ट्रीट, बेकनहेड में। आज सुबह 10 से लेकर 4 PM तक ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर रहेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसा ही प्रोग्राम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं, ताकि आप भी जाकर अपने बच्चों को जो कुछ हो सके इनके लिए आज का दिन बिल्कुल एंटरटेनिंग बना सके, क्योंकि छुट्टियां भी अब खुद ख़त्म होने को आई है ना, मंडे से वापस फिर ये स्कूल चले जाएंगे, तो ऐसे में एक ही वीकेंड है अब आपके पास में बाकी, अगर जो आपसे हो सके तो ये सभी कुछ आप उनके लिए आज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।

हम पर कुछ 25 मिनट्स बाकी रह गए 8 बजने में। 8 पर सुबह का जो पहला समाचार ये भी रहेगा, जबकि आज है 10th of October, तो ऐसे में फिजी इंडिपेंडेंस डे भी है, खुशियां मना रहे हैं लोग। और इसके अलावा जबकि आज 10 अक्टूबर है, तो कल 11 अक्टूबर है और कल से नवरात्रि सेलिब्रेशंस शुरू हो जाएंगी काफ़ी जगहों पर, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपके कम्युनिटी में आप कहां कहां पर जाकर सुन सकते हैं, इस प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लो एवेन्यू मेनेकाओ में, यहां पर संडे 11 अक्टूबर से लेकर ट्यूसडे 20 अक्टूबर तक 6 PM हर इवनिंग यहां पर कथा चलेगी। उसके बाद में गरबा और डांडिया रास भी रहेगा डेली आफ्टर कथा। और दूसरी जगह श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बेगडेल नोट शो ओकलैंड में 6:15 PM से प्रोग्राम रहेगी और डीजे गरबा भी रहेगा 8:10 PM से लेकर 9:30 PM तक। और खास 18 अक्टूबर को 6:30 PM से भजन जेमिंग और डीजे गरबा रहेगी। इसके साथ में श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 20th of October तक आप जा सकते हैं। 7 PM से लेकर 9 PM तक यहाँ पर प्रोग्राम रहेगी एट 38A वोम्सली रोड ओटाहू ओकलैंड में। इसके अलावा दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी जो नवरात्रि सेलिब्रेशन है इसको मनाएंगी 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हर इवनिंग 6:30 PM पर एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाओ बिल्कुल वेयर हाउस के सामने। यहाँ पर कथा के बाद में गरबा डांडिया और हुद्दा तासा भी रहेगा आपके लिए। तो ये सभी कुछ है जहाँ पर आप जा सकते हैं कल से, जबकि नवरात्रि की सेलिब्रेशन जो है ये शुरू हो रही है और काफ़ी लोग इसमें बिजी भी रहेंगे और बड़े ही अच्छे हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। तो कुछ जगह हैं जो आपको बता रहे थे जहाँ पर आप जाकर इस कथा में भाग ले सकते हैं।

0: हम पर आप भी अपने ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं, चाय या कॉफी का मजा ले रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। जबकि इज द वीकेंड सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है और ऐसे में अभी का साथ है। और जो लेटेस्ट खबर हमारे हाथ लगी है कि पैनामा, जो कि सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, अगर जो आप मैप में इसका जियोग्राफिकल लोकेशन जानना चाहते हैं तो मेक्सिको के साउथ में है और ये बिल्कुल फॉल होता है मेक्सिको और कोलंबिया के बीच में। तो यहाँ पर आज न्यूजीलैंड समय अनुसार जस्ट बिफोर 7 AM यहाँ पर एक एर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया है इस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में, जहाँ पर जो रिक्टर स्केल पर 7.6 इसका नाप बताया गया है एंड एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर्स ये एर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया है। तो अभी इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स हाथ लगी है कि यहाँ पर जो लोग थे काफ़ी निकलकर बिल्डिंग से बाहर आकर रास्ते में हो गए, क्योंकि बिल्डिंग्स जो थी ये शेक करने लगी थी, हिलने लगी थी और लोग इवैक्यूएट करके बाहर रास्तों पर आ गए। काफ़ी विजिबली शेकन रेजिडेंट्स थे और इसके जो इम्पैक्ट के बारे में और भी समाचार आगे हाथ लगेगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी साथ में GNS साइंस ये अभी असेस कर रही है कि इस सुनामी इस एर्थक्वेक को लेकर रादा क्या कोई सुनामी का खतरा बन सकता है या नहीं। तो इस पर और भी जो अपडेट्स है शायद आप न्यूज़ में सुन सकेंगे, लेकिन ऐसा जो लेटेस्ट अपडेट है पैनामा के बारे में अभी हमारे हाथ लगा है।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Visit your local Flooring Extra showroom and shop the wool sale today.
6: Flooring Extra. Adore your floor.
7: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
8: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
9: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
8: Yeah, that sounds like me.
9: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
8: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
10: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
11: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
12: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार मा। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
11: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 सोलार रोड माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।
2: Bollywood's biggest hits.
13: Project Gandhi.
14: Toast, coffee, aur hum ka energy.
15: Subah ho gayi maamu.
14: Saturday breakfast on Hum.
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं अभी हम के स्टूडियोज में। और हमारे हम फेसबुक पेज पर अगर जो आप इसको फॉलो करते हैं और अगर जो अभी तक आपने फॉलो नहीं भी किया है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इसको जाकर फॉलो करें। क्योंकि फॉलो करने से ही यहाँ पर ढेर सारे जो अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है, आपको मिलेंगी और मिल सकती है। और यहाँ पर मैंने सुबह सुबह कुछ आपकी खामियों को लेकर और आपकी अच्छाइयों को लेकर कुछ अपडेट डाला है, इसे आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट है और जबकि वीकेंड है तो ऐसे में ढेर सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रहे हैं, जैसे कि ब्लेडिस्लो कप आज ऑकलैंड में रहेगा जहां पर ऑल ब्लैक्स और वेलबीज एक दूसरे का सामना करेगी। इसके अलावा फिजी में आईडीसी टूर्नामेंट भी चल रही है, इस पर भी बातें थोड़ी देर में होगी। और इसके साथ में इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ये वापसी कर रही है जबकि टू वीक्स का जो ब्रेक था ये अब ख़त्म हो चुका है, तो उनके भी जो फिक्स्चर्स है इस पर भी ज़रूर ध्यान देंगे थोड़ी देर में।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई आमो
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ छोटा सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
3: मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। 8:02 हो चुके हैं, वीकेंड है, वीकेंड का समय है, माहौल है और वेदर भी अगर जो सीबीडी में देखें तो आज कुछ क्लाउडी भी रहेगा, लेकिन जो ब्राइटनेस की ज़रूरत है यहाँ पर हम पर आपके लिए हम बिखेरते रहेंगे 104.2 FM साथ में रोवा पर। और भी बातें आपके साथ में रहेंगी जबकि नेक्स्ट आवर पर है मस्ती मीठा, इसके साथ साथ में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूं, आपके जो मैजिक नंबर्स है 5599 जहां पर आप अपना जो मैसेज है भेज सकते हैं या फिर 0800 004866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। 8:10 हो चुके हैं एंड टुडे इज द 10th of October। तो ऐसे में फिजी मार्क कर रही है अपना 56th इंडिपेंडेंस ईयर। जी हाँ, 56th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र दिवस आज फिजी के लिए है। और ऐसे में इसको कोइंसाइड करते हुए यहाँ न्यूजीलैंड में फिजियन नेशनल लैंग्वेज वीक था, तो फिजी लैंग्वेज वीक था, इसको भी मार्क किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी फिजी से आए हुए लोग हैं, खासकर आपको पता होगा शायद, मातन रेंड्रे तोतो का, मातन रेंड्रे तोतो का इसका मतलब क्या है? अगर जो आपको मालूम है तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजिए अपने नाम के साथ में, मातन रेंड्रे तोतो का, एंड हैप्पी फिजी डे।

0: हम पर अभी का साथ है। और जबकि सवाल किया था हमने कि फिजी नेशनल लैंग्वेज वीक को जबकि मार्क किया गया है यहाँ न्यूजीलैंड में, और फिजी अपना इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट कर रही है, तो मातन रेंड्रे तोतोका, ये फिजियन भाषा में एक टर्म है, मातन रेंड्रे तोतोका, इसका क्या मतलब है अगर जो आपको मालूम है 5599 पर ज़रूर भेजें। अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो हैरानी भी है, लेकिन अगर जो आपको पता है तो 5599 पर भेजें कि आपको क्या लगता है अगर जो आपको कोई कहे मातन रेंड्रे तोतोका तो इसका क्या मतलब हुआ। सेंड योर मैसेजेस ऑन 5599, अच्छा लगेगा कि आपसे अगर जो पता लगे कि इसका क्या मतलब है, अपने नाम के साथ में जरूर भेजें।
1: You're listening to Avineet. Saturday Breakfast on Hum.

0: हाँ, पर हम मैं हूँ आपका साथी अभी और दीप्तेश इज लिसनिंग इन, और दीप्तेश फिजी से है। इन्होंने लिखकर भेजा है कि मतन रेन रे तोतोका का क्या मतलब है। तो दीप्तेश आपने तो सवाल की लाज रख ली, क्योंकि आप ही ने अपना जो मैसेज है ये भेजा है अभी तक, और बाकी लोगों का आना बाकी है। तो मतन रेन रे तोतोका, खास करके अगर जो आप फिजी से है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजे। इसके बाद में कुछ संदेशों के बाद में इस सवाल को रैप अप करेंगे, एंड आई विल टेल यू कि इसका मतलब क्या है आखिर में।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: आप सैटरडे ब्रेकफास्ट शो एंजॉय कर रहे हैं अभी के साथ में ओनली ऑन 104.2 एफएम साथ में रोवा पर. और जो सवाल किया था मातन रेन रे तोतो का, इसका मतलब हुआ ब्यूटिफुल स्माइल. तो अगर जो आपकी बार आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो मातन रेन रे तोतो का भी कह सकते हैं फिजियन भाषा में. और स्माइल हो भी तो ऐसी कि आपकी नींद उड़ जाए.

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में। अगर जो आपने मिस कर दिया था तो आपको फिर से बता दूँ कि पनामा में, जो कि सेंट्रल अमेरिका में बेस्ड है, अगर जो आप इसको जियोग्राफिकली देखोगे तो मेक्सिको सिटी के साउथ में है और कोलंबिया के नॉर्थ में है। तो ये जो कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा, यहाँ पर आज न्यूजीलैंड टाइम सुबह 7 बजे से पहले एक अर्थक्वेक स्ट्राइक किया था, मेजरिंग एट क्लोज टू 7.7 ऑन रिक्टर स्केल। और इसके बाद में नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट ने और साथ में जीएनएस साइंस ने असेस करना शुरू किया कि क्या इससे कोई खतरा न्यूजीलैंड को हो सकता है कि नहीं। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ पैसिफिक सुनामी, तो अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हाथ नहीं लगी है, लेकिन कोई इमीडिएट रिपोर्ट्स ऑफ डैमेज अभी तक सामने नहीं आई है पनामा में। लेकिन लोग काफ़ी घबराए हुए बाहर निकलते हुए देखे गए बिल्डिंग से इवैक्यूएट करते हुए। तो जैसे और कुछ रिपोर्ट इस पर मिलेगी तो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं।

0: पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये। और चलो एक बार फिर आपको बता दूँ, कम्युनिटी न्यूज़ में बीआर अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ये होस्ट करने वाली है अपना 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट ऑन 24th एंड 25th ऑफ अक्टूबर। तो ये डेट्स आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि 24th और 25th अक्टूबर को ढेर सारे हंगामा होने को है, जबकि इस टू डे इवेंट में ढेर सारा स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन रहेगा, जिनमें शामिल है कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड टग ऑफ वो। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग देखने के लिए भी, कबड्डी देखने के लिए भी और साथ में टग ऑफ वो देखने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा ढेर सारे फन एक्टिविटीज़ रहेंगे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, जहां पर लेमन एंड स्पून रेसेस रहेगा, म्यूजिकल चेयर्स भी रहेंगे और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ अलग रेसेस रहेंगे। एंट्री बिल्कुल फ्री है और अगर जो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ज़रूरी है। तो प्रदीप को आप कॉल करें 0212385948 पर, 0212385948 पर। तो अगर जो आप इनको कॉल करते हैं आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि इन खेलों में आप भी अपने आप को शामिल कर सके फॉर दी 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट ऑन 24th एंड 25th ऑफ अक्टूबर। अभी नोटिस में पढ़ रहा हूँ तो वेन्यू तो नहीं दिया है अभी, इसका खुलासा शायद होने वाला है कुछ दिनों में, लेकिन आप भी इस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब को सहायता दे सकते हैं, जाकर उनको इनकरेज कर सकते हैं, जो कि अपना 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट मार्क करेंगे 24th एंड 25th अक्टूबर को। इसके साथ में एक और एक जो सोशल मैसेज है, मेनोपॉज ग्लोबल प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड मेनोपॉज डे, जो कि कल मार्क किया जाएगा, संडे सॉरी नेक्स्ट वीक संडे को 18th ऑफ अक्टूबर को मार्क किया जाएगा ग्लोबल पावर सर्ज। जबकि मेनोपॉज की बात होती है तो आजकल काफ़ी जो मेल्स है ये अवेयर होने लगे हैं कि मेनोपॉज से क्या क्या बदलाव शरीर में होते हैं, इनको लेकर क्या क्या आपके भाव में बदलाव होते हैं। तो इसके बारे में भी अगर जो आप और जानना चाहते हैं तो ग्लोबल पावर सर्ज में आप जाकर शामिल हो सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं globalpowersurge.com, जहां पर ढेर सारी बातें आपके साथ में रहेगी। और वर्ल्ड मेनोपॉज डे ये मार्क किया जाएगा संडे 18th अक्टूबर को। तो रजिस्ट्रेशन के लिए globalpowersurge.com यहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा श्रुति भी हमारा साथ दे रही हैं और श्रुति का जो वर्कआउट है ये शुरू हो गया, जिम में है और रोवा पर हमारा साथ दे रही हैं और कहा है कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड कीप देम प्लेइंग क्योंकि आई एम वर्किंग आउट। तो चलो बिल्कुल आपके साथ में हम भी जुड़े हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। आप भी सफ़र कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अपना मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें 5599 पर, ताकि हमें पता लगे कि आप सुन रहे हैं हमें एंड यू आर इन्जॉइंग इट। अपना वीकेंड आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं या ड्राइव पर निकले हैं या फिर ग्रोसरीज के लिए भी आप निकल पड़े हैं सुबह सुबह, सेंड मी अ मैसेज 5599 पर।
1: और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting grandparents, but Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
2: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
3: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, babe. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
4: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
3: Yeah, that sounds like me.
4: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
3: Well, you're driving, so I'll do it now.
4: That was quick and easy.
5: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
6: Flight Centre's UK and Europe sale is on now. Fly return to Europe from Auckland from $2,571 with Lufthansa Group. Book in store or online. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
7: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items, big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers, Veena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe, your one-stop shopping destination this Navratri.
8: मैं हूँ हरीश लोडिया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 629-3333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: हम Saturday breakfast on हम
11: सरडे ब्रेकफास्ट शो है ये। 10 मिनट बाकी रह गए 9 बजने में। आपने फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के बारे में सुना ही होगा, जहां पर बम्पर प्राइजेस है, $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस है जीतने को दिवाली पर विद हम। तो इसका जो मौका है आपको नेक्स्ट आवर पर जरूर देंगे और कीप ट्यून्ड इन, क्योंकि यू कैन गेट योर सेल्फ इन टू द ड्रॉ।
12: Wow. Yeah.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: हे चैट जीपीटी दिवाली आने वाली है ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ
1: बढ़िया है अच्छा ग्रोसरीज लेना है पूरे घर की पेंटिंग करवानी है नया सोफा लेना है इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए और हाँ कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए
2: इंटरेस्टिंग और कुछ
1: बस इतना ही
2: सर मैं चैट जीपीटी हूँ अंबानी नहीं हमसे ना हो पाएगा
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स फ्यूल वाउचर्स होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैरिंगटन लिविंग मनोको ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स लॉजिक Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: MediaWorks Complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouse.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
5: Advertise with MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
6: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मैनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th November टीज एंड सीज अप्लाई
7: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
9: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050 यूनिट के 33 वॉम्सली रोड ओटाहूहू फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz

0: Saturday Breakfast on Hum. Masti Meter on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में 9:01 हो चुका है. ऐसे में we are halfway through the show, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और ये सफ़र है यहाँ से जो अगले आवर तक, ये है मस्ती मीठा का सफ़र, जहाँ पर ढेर सारे इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में रहेंगी. तो चलो, हमने सोचा कि इस आवा की शुरुआत कुछ अलग मोड पर करते हैं, जबकि फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पर आप बम्पर बोनांजा प्राइजेस जीत सकते हैं इस दिवाली के लिए. और जो ड्रॉ रहेगा फ्राइडे 30th अक्टूबर को रहेगा, जस्ट इन टाइम फॉर योर दिवाली शॉपिंग. तो ऐसे में कूल प्राइजेस आपके हाथ लग जाए तो कैसा रहेगा. तो चलो, सबसे पहला प्रमोशन आपके साथ में आज शुरुआत करते हैं इसकी. आपको सिर्फ लिख कर भेजना है NZPMI, फिर स्पेस डाले, स्पेस के बाद में अपना नाम लिखे, और 5599 पर आपको भेजना है. तो N फॉर नवम्बर, Z फॉर जुलू, P फॉर पीटा, M फॉर मायोरा एंड आई फॉर इंडिया. NZPMI लिखकर स्पाइस डाले और फिर उसके बाद में अपना नाम लिखे, 5599 पर भेजे. जबकि ड्रॉ होने पर अगर जो आप लकी विजेता ठहरे, जहां पर एक ही विनर होगा, उनके हाथ लगेगा $1000 ऑफ माइटा 10 वाउचर. $1000 जहां पर आप अपने घर को टाइडी अप कर सकेंगे. आपकी शायद कोई पेंटिंग प्रोजेक्ट है जो रुकी हुई है, या फिर आपको कुछ और काम करना था, या फिर घर के लिए अपने लिए कोई टूल लेना था, ये सभी कुछ आप कर सकेंगे जब ये वाउचर आपके हाथ लगेगा. लेकिन ये करने के लिए आपको ड्रॉ में शामिल होना पड़ेगा. तो ड्रॉ में शामिल होने के लिए वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम. 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक आपके पास में समय है. NZPMI लिखे, स्पेस दे, फिर अपना नाम लिखे और 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करें. तो याद रहे, एवरी टाइम यू टेक्स्ट अस इज स्टैंडर्ड कैरियर राइट्स डू अप्लाई. लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम्स भी भाग ले सकते हैं, यानी कि एक ही समय पर आप 2-3 मैसेज भी लिखकर भेजना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा एंट्री रहेगी, उतना ज़्यादा चांसेस आपके पास में रहेगा. तो ये सभी कुछ अभी के लिए NZPMI लिखे, स्पेस दे, अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजे. जबकि दो गाने आपको सुनवाऊंगा, बस उतना ही समय आपके पास में रहेगा.

हम पर अभी का साथ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग, आप भी एंजॉय कर रहे हैं इसी तरह से हमारा साथ देते रहे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो हमने आपको समय दिया था फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत आपको दिवाली में प्रमोशंस में शामिल होने के लिए, तो एंट्रीज मिल चुके हैं। अश्नील आपका मैसेज आ गया है, जितेन आपका भी मैसेज आया है, लेकिन आपने NZTMI लिख दिया है, यानी कि NZT फॉर टेंगो लिख कर भेजा है आपने। सही कोड है NZP फॉर पीटर, NZPMI और फिर अपना नाम स्पेस के बाद में डालना था, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी आगे भी काफ़ी मौके रहेंगे जहां पर आप ड्रॉ में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ में शिरी आपका भी जवाब आया है, उसके बाद में डिंपल आपने भी मैसेज किया है एश वेलिंगटन से, थैंक यू सो मच, आप भी सुन रही हैं, आपने भी अपना नाम प्रमोशन में डाल दिया है। इसके साथ में तानिया है और अजय है, थैंक यू सो मच, आप सभी का एंट्रीज ड्रॉ में शामिल हो गया है। और जबकि आज है 10th of October, तो फीजी इंडिपेंडेंस डे मार्क किया जा रहा है, ऐसे में आज शाम जो सेमीफाइनल्स है इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप के तहत IDC टूर्नामेंट भी चल रही है, और सेमीफाइनल्स में रेवा टेक्स ऑन नावुआ 2:30 PM जो पहला सेमीफाइनल रहेगा, और दूसरे सेमीफाइनल में जो कि आज शाम 5 बजे रहेगा, बा और लंबासा के बीच में भिड़ंत रहेगी। तो ये जो मैचेस जब शुरू होंगे तब तक तो मैं चला जा चुका होऊंगा, लेकिन आपके साथ में एक और एक हमारे साथी रहेंगे, वो भी आपका साथ देंगे और वो भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए रेवा टेक्स ऑन नावुआ 2:30 PM, साथ में बा टेक्स ऑन लंबासा 5 PM। आपकी कौन सी टीम है 5599 पर ज़रूर भेजें, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने टीम के लिए अपना जो मैसेज है आप भेज सकते हैं। जबकि रेवा और नावुआ के मध्य में खेल रहेगा, उसके बाद में बा टेक्स ऑन लंबासा, और ये एक क्रैकिंग मैच रहेगा मेरे ख्याल से बा और लंबासा के बीच में। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बहुत दिनों से चल रहा है बालाबासा के बीच में, तो आप भी अपना टीम का सपोर्ट दिखाने के लिए 5599 पर ज़रूर मैसेज करें।

हम पर मस्ती मीटर का ये मोड है, मैं हूँ आपके साथ में अभी। और आपको बता दूं कि हम म्यूजिक स्टेशंस में आप हम रिवाइंड जैसे 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं, और फिर 80s का भी जुक बॉक्स है। इसके साथ में फीजी भजन्स का भी ऑप्शन है, जहाँ पर आप फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने कन्वीनियंस पर सुन सकते हैं। चर्दी कला भी है पंजाबी हिट्स के लिए, और साथ में फीजी कीर्तन संग्रह एंड राहत फतेह अली खान का भी अलग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर उनके गाए हुए सूफी गाने भी स्टोर्ड है। तो मैं आपको खासकर जो 80s का जुक बॉक्स है इस पर ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि अगला जो कॉन्टेस्ट है आपके साथ में खेलने वाले हैं, आपको एक थीम सॉन्ग सुनाने वाले हैं। कई फिल्म होते हैं जो उनकी जो थीम सॉन्ग होती है, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी एम्पावरिंग होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाती है। तो ऐसा ही कुछ एक इंस्ट्रूमेंटल आपको सुनवाने जा रहे हैं, और इसको आपको पहचान कर 5599 पर हमारे पास में भेजना है। और इस गीत को सुनने के लिए आपको हम 80s जुक बॉक्स में जाकर इसको सुनना होगा, क्योंकि ये 80 का ही तराना है। इन द ईयर 80s ये फिल्म आई थी, शायद 1980 में ये फिल्म आई थी, लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंटल है आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर सुनिए एंड गिव इट अ ट्राई, देखिए आपको अंदाज़ा लगता है कि क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि लोग इसको सुनते ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि गिटार पर जब भी ये प्ले होता है इट जस्ट स्टैंड्स आउट।

हाँ, तो अगर जो आपको पता लगता है आपकी मेलोडी में ज़्यादा शार्प ईयर्स है, आपकी इंटरेस्ट है और सुनते ही आपको पता लग जाता है, तो ज़रूर पहचानिए। 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में भेज सकते हैं।

हाँ, एक सुभाष घई डायरेक्टोरियल फिल्म थी, आपको यही पहचान कर बताना है कि किस फिल्म का ये थीम म्यूजिक था। थीम म्यूजिक पर और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक पर थोड़ी और बातें करेंगे, लेकिन अभी मुझे इंतजार है आपके जवाबों का 5599 पर।

अब्बर रवि का साथ है और एक और एक मैसेज आया हमारे पास में 0165 आपने कहा है गुड मॉर्निंग हम FM थैंक यू सो मच आई डोंट नो इफ यू आर स्टिल डूइंग लोकल बिजनेस शाउट आउट्स तो ये जो देसी बीज शाउट आउट्स है आपके लिए रहता है एवरी वीक और इस वीक भी आपके लिए 8:11 रहेगा तो आपका जो मैसेज है जो आप प्रमोट करना चाहते हैं 11 बजे के बाद में एक बार फिर हमारे पास में भेजे एंड वी विल गिव यू अ शाउट आउट ये 11 बजे के बाद में सेगमेंट रहता है आपके लिए लेकिन अभी के लिए जो हमने थीम म्यूजिक आपके लिए प्ले किया था ये था फिल्म कर्ज से जो कर्ज 1980 में सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी इनमें काम किया था ऋषि कपूर ने री इनकारनेशन पर ये फिल्म बेस थी और ऐसा कहा जाता है कि ये हेवली इंस्पायर्ड थी बाय द हॉलीवुड फिल्म द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड और इसके बाद में सुभाष घई ने बताया कि हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी क्योंकि कुछ कुछ मूवीज़ जो होती है हमेशा बॉक्स ऑफिस पर ही नापे जाते हैं हालांकि दे कैन बी गुड मूवीज़ टू वॉच तो कर्ज के साथ में ऐसा ही हुआ था हालांकि ये अच्छी फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी तो इससे ऋषि कपूर को काफ़ी नाराज़गी हुई थी और इसके बाद में जो म्यूज़िक था ये भी काफ़ी फेमस हुआ है और जबकि थीम सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे तो इस थीम सॉन्ग से कुछ कुछ फिल्मों के ऐसे थीम सॉन्ग होते हैं जो काफ़ी इम्प्रेसिव होती है एंड यू कीप गोइंग बैक टू इट तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में भी मैंने कुछ पता किया अगर जो आपने एनिमल देखी है तो आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि हालांकि ज़्यादातर के फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक एक ही तरह का होता है एंड इट गेट्स रिपीटेड थ्रू आउट द मूवी ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना सके लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है अलग अलग सीन्स में अलग अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक है जैसे कि अगर जो आप देखेंगे तो जब वो रेंज रोवर से एंट्री करते हैं बाहर तो उसके लिए अलग है स्कल फाइट एंट्री का अलग म्यूज़िक है बैकग्राउंड म्यूज़िक साथ में फ्रेडी का इंट्रोडक्शन का अलग म्यूज़िक है और जो प्री क्लाइमैक्स जो फाइट है उसको लेकर भी अलग म्यूज़िक है अबरार के लिए अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक है एंड विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग और अगर जो आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं ट्राई लिसनिंग टू बैकग्राउंड म्यूज़िक अपार्ट फ्रॉम हम अगर जो आप हम के साथ में भी वॉक करते हैं विच इज़ वेरी गुड लेकिन अगर जो आप BGM सुनकर बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनकर वर्कआउट करेंगे या फिर वॉक करेंगे या फिर रनिंग या जॉगिंग के लिए जाएंगे इट विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा हाई तो अगर जो मैसेजेस की ओर देखें तो सही पहचाना था अंजलि ने थैंक यू सो मच अंजलि आपने सही जवाब भेजा हमारे पास में इसके साथ में तरुण शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग आपने भी मैसेज किया थैंक यू सो मच इसके अलावा एनजी थी एनजी ने भी मैसेज किया श्रुति ने भी मैसेज किया हमारे पास में थैंक यू और इसके साथ में अमन और शिवा और साथ में रेशल आप सभी को थैंक यू कि आपने इस थीम म्यूज़िक में पार्टिसिपेट किया इसको पहचाना आइडेंटिफाई किया और जो अपना जवाब है हमारे पास में भेजा तो 10 बजे से आपके साथ में रहेगा जुगाड़ जंक्शन लेकिन अभी के लिए अगला ये गाना मीका सिंह की आवाज़ में

0: हम पर 16 मिनट्स अवे फ्रॉम 10 और 10 पर आपके लिए समाचार भी रहेंगी, लेकिन अभी जो सुर्खियों में न्यूज़ है कि एक होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया गया है क्राइस्टचर्च में, जबकि कल दो लोगों की मौत हुई है और दो लोग और सीरियस कंडीशन में हैं। पुलिस को बुलाया गया है था ओवरनाइट एक ओलिवियस रोड एड्रेस पर जो कि फिलिप्स टाउन सबब में है, और यहाँ पर जाने के बाद में और कुछ छानबीन करने के बाद में दो लोगों को कस्टडी में भी लिया गया है, और इस पर जो और जानकारी है आप बाद में न्यूज़ में भी सुन सकेंगे। तो ये कुछ हुआ है ओवरनाइट फिलिप्स टाउन क्राइस्टचर्च में, जहाँ पर दो लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में दो लोगों को सीरियस कंडीशन में अस्पताल भी लेके गया है। तो ये सभी कुछ फिर हुआ फिलिप्स टाउन क्राइस्टचर्च में ओवरनाइट।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz।
0: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Ye hai Masti Meter.
5: That's right, ये है मस्ती मीठा में, और मस्ती मीठा में कुछ मस्ती भरे बातें भी होती रहती हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप इससे सहमत हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी खामियों को, यानी कि आपकी बुराइयों को, आपकी खामियों की लोग ढोल बजाकर पर्चा बांटेंगे। जो कुछ अच्छा किया तो, जो आपने कुछ अच्छा किया तो, आपकी अच्छाइयों को अपना बताकर आपका रास्ता भी काटेंगे। तो अगर जो आप इससे सहमत है तो ज़रूर मुझे बताइए 5599 पर, या फिर इसका जो वीडियो है मैंने अपलोड भी किया है हम फेसबुक पेज पर, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं क्या आप सोचते हैं इसके बारे में।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम मस्ती मीटर ऑन हम
2: मस्ती मीटा में अगर जो आपने मिस कर दिया था तो मैं आपको बता दूं कि कल से शुरू हो रहा है नवरात्रि सेलिब्रेशंस. इसके लिए आप रामकृष्ण मंदिर जा सकते हैं 25 ओनस्लो एवेन्यू, जहां पर 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 6 PM से यहां पर कथा चलती रहेगी. इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बेगडेल नोट शो भी आप जा सकते हैं, 6:15 PM से यहाँ पर कथा रहेगी. श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप यहां जा सकते हैं, 7 PM से लेकर 9 PM तक 38A वोम्सली रोड ओटाहू में यहां पर कथा प्रचार चलती रहेगी. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 6:30 PM हर इवनिंग एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाउ, सीधा ठीक वेयर हाउस के ऑपोजिट यहां पर आप जा सकते हैं. गरबा डांडिया और साथ में हुद्दतासा का रास रहेगा हर इवनिंग आफ्टर द कथा.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ सुता सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ और चलता रहूंगा टिल 12. अब जबकि 10:02 हो चुके हैं तो ऐसे में हम आ चुके हैं जुगाड़ जंक्शन के मोड़ पर, जहां पर आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि कैसे आपके फायदे हो सकते हैं इस आवा पर. तो सबसे बड़ी जुगाड़ अभी के लिए क्या हो सकती है कि फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, ये प्रमोशंस हम पर चल रहा है जहां पर आप ढेर सारे शानदार प्राइसेस जीत सकते हैं दिवाली के लिए. और ड्रॉ भी कब होगा? फ्राइडे 30 अक्टूबर को, यानी कि ज़्यादा खींचा नहीं जाएगा इस प्रमोशन को और जस्ट इन टाइम ड्रॉ होगा. आपको दिवाली के लिए ढेर सारे प्राइजेस मिल सकते हैं अगर जो आपका नाम ड्रॉ में शामिल हुआ. तो जीतने के लिए खेलना तो पड़ेगा ही और ये मौका हम आपको देंगे बस थोड़ी देर में कि कैसे आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर सकते हैं. बस थोड़ी ही देर में बताएंगे. जबकि $1,000, जी हाँ, $1,000 का जो वाउचर्स है ये आप जीत सकते हैं बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं.

हम पर 10:10 हो चुके हैं, तो अब समय हुआ कि फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत आपको दूसरा मौका दिया जाए जहां पर अपने नाम को आप ड्रॉ में शामिल कर सके। तो आपको इस बार के लिए सिर्फ ये करना होगा, आपको कीवर्ड लिखना होगा लॉजिक, LOGIC लिखकर स्पेस देकर अपना नाम साथ में लिखकर 5599 पर भेजना होगा, ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सके जहां पर आपके हाथ लगेगा $1000 का न्यू वर्ल्ड का वाउचर। एक ही विनर ठहरेगा और ये लकी पर्सन आप भी हो सकते हैं। तो अगर जो आप इंटरेस्टेड है, और क्यों ना हो, क्योंकि $1000 का न्यू वर्ल्ड का वाउचर जस्ट इन टाइम दिवाली के लिए सेलिब्रेशंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर बनेंगी, ढेर सारे भोजन भी बनेंगे, फूड, ढेर सारे डिलीशियस आइटम्स आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी कुछ में आपको राहत मिल सकता है, जबकि न्यू वर्ल्ड का वाउचर मिलेगा $1000 के लागत। एक ही विजेता ठहरेंगे, एक ही विनर रहेंगे। तो लॉजिक लिखे, LOGIC स्पाइस देकर अपना नाम लिखे और 5599 पर भेजे, ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर सके। और लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला के बारे में तो आपने सुना ही है, जिनकी एडवर्टीजमेंट्स हमारे रेडियो पर चलती रहती है, और ये बताते हैं, ऐलान करते हैं कि आपकी अगर जो कोई भी प्रपोजल कहीं पर किसी भी मॉर्गेज ब्रोकर के साथ में डिक्लाइन हुई हो, या आपको बैंक ने डिक्लाइन किया होगा, तो ये ऐलान करते हैं कि आप इनको कॉन्टेक्ट करें 0800 LOGIC G पर, और यहाँ पर इनसे बातें कर सके। गुरु केंडोला आपको बेस्ट एडवाइस देंगे आपके प्रॉपर्टी को लेकर जो आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और हो नहीं रहा है, तो गुरु केंडोला को आप लॉजिक फाइनेंस में ज़रूर कॉल करें, ताकि ये आपकी मदद कर सके। और इनकी ओर से, लॉजिक फाइनेंस की ओर से, अभी के लिए लॉजिक लिखो, स्पेस दो और फिर अपना नाम लिखो और 5599 पर भेजो। समय उतना ही है कि जब तक ये अगला गाना बजाएंगे। जैसे ही मैंने मुड़कर प्लेटफॉर्म पर देखा है तो लोग आज ऑन फायर है, क्योंकि हर किसी को ये प्राइस चाहिए, एंड आपको भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। तो अभी से ये अगला गाना आप सुनिए, और इस गाने के अंतर्गत यानी कि अंदर अंदर आपको अपना जो नाम है भेजना है, लॉजिक स्पाइस एंड योर नेम ऑन 5599।

0: जमकर मैसेजेस आए हैं क्योंकि लोगों को जीतना पसंद है और अगले आवा पर एक और एक मौका आपको देंगे जहां पर अपने नाम को एक बार फिर आप ड्रॉ में शामिल कर सकेंगे. ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एट नेक्स्ट आवा, लेकिन याद रहे कि स्टैंडर्ड करियर रेस डू अप्लाई और अभी के लिए आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर लिया गया है जितने लोगों ने अपना मैसेज किया भेजा है हमारे पास में लॉजिक लिखकर. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, यही कहना चाहेंगे. नेक्स्ट आवा पर एक और एक मौका आपके पास में रहेगा जहाँ पर $1,000 कैश आप जीत सकेंगे दिवाली के लिए.
1: जुगाड़ जंक्शन ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट.

0: हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है। और आप भी अगर जो एक फिटनेस जर्नी पर है और आपको भी शुगर क्रेविंग होती है, तो शुगर क्रेविंग के लिए व्हाट कुड बी एन ऑप्शन फॉर अ हेल्थी डिजर्ट, ये बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जबकि जुगाड़ चाहिए हर किसी प्रॉब्लम की, तो अगर जो शुगर क्रेविंग होती है तो आप इसको कैसे बीट कर सकते हो, बस थोड़ी देर में।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने, ले ले हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई, वेयर स्लीपी हेड कंफर्ट मीट्स एक्सेप्शनल वैल्यू। बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GW एंड हैवल एंड ओमुरा जे क्रू। 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: At Bunnings, spring really does start in the garden. Come into Bunnings, bring the tamariki down, find something that we can all get involved in. Nothing better than getting outside to do your gardening.
6: Get watering with a Pope 30-metre True Blue garden hose, only $48.17. Tidy up the backyard with a Nazito PXC 18-volt cordless line trimmer kit, $209. And grab some Yates 4-litre hose on weed and feed, just $30.46.
5: We've got what you need for less.
7: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
8: Hey you with the ears, your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping, babe, wake up, look at this meme. Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
9: Happy-happy-happy-o.
10: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
11: I love my job. It's hard, but I love it.
12: The problem is, prices go up, but the pay doesn't match.
13: So, if our nurses and tradies aren't staying, why would I?
14: I'm 27 and still renting. I just want a place of my own.
15: Every day I see families give up before they've even started.
16: 60 years in Aotearoa, and I never worried about it until now.
17: I just want my grandchildren to grow up here.
18: Party vote Labor.
19: Party vote Labor.
9: Party vote Labor.
5: Better starts now.
4: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
12: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

और इसको आप केले को आप स्लाइसेस में करके, थिन स्लाइसेस में करके अपने योगर्ट में आप इसको डाल सकते हैं टुगेदर विद ग्रेप्स। अगर जो आप नट्स भी चाहते हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नट्स को भी ऊपर से आप छोटे छोटे टुकड़े में करके गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद में, डिनर के बाद में आप इसका मज़ा ले सकते हैं, विच इज़ आप अपने आप को इंडल्ज भी कर रहे हैं एंड थोड़ा सा जो आपका शुगर क्रेविंग है इसको आप सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, लेकिन इन अ मच हेल्थियर वे। तो लो फैट योगर्ट का आप इस्तेमाल करें, साथ में कुछ फ्रूट्स आप ले सकते हैं, नट्स आप ले सकते हैं, एंड अगर जो आप चाहो तो उसमें पीनट बटर का भी एक छोटा सा स्पून क्वांटिटी में आप ले सकते हो, और या फिर हनी भी ऊपर से आप डाल सकते हो जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि जो क्रेविंग है आपका ये आप उसको सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अगर जो आपको इसके बिना भी चल रही है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, लेकिन शुगर क्रेविंग के लिए आप ये ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं।

हम पर ये सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में धर्मेंद्र, आपका जो मैसेज है मिल गया है हमें और आपका जो संदेश है ये देसी बीज शाउट आउट में जरूर आफ्टर 11 प्ले होगा। इसके साथ में 7026, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। और आप हमें ये बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड प्ले इट फॉर यू हियर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। और जबकि आज 10th of October है तो फिजी इज सेलिब्रेटिंग एंड मार्किंग इट्स 56th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऐसे में मैंने सोचा कि जबकि कुछ ना कुछ फिजी से जुड़ा ट्रिविया क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में इस हवा पर आपसे पूछते हैं, फिजी से एक गोल्फा है हु मेड इट बिग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एक गोल्फा है फिजी से जो वर्ल्ड स्टेज पर काफ़ी अच्छा नाम किया है इन्होंने, और ये इनको कहा जाता है एज अ निक नेम द बिग फिजियन, द बिग फिजियन, ये फिजियन गोल्फा है और अभी ये 63 ईयर्स के एज के हैं और इन्होंने PGA टूर भी जीता है, तो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नाम किया है इन्होंने। अगर जो आपको पता है कि किस गोल्फा के बारे में बात हो रही है तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। एक गोल्फा है फिजी से, एक हम्बल बिगनिंग से आए थे और केडी थे, अब और शुरू में केडी थे और उसके बाद में गोल्फ सीखा भी है और फिर 1980s में ही टर्न्ड प्रोफेशनल इन USA, अभी USA में बेस्ड है और इसको प्यार से लोग द बिग फिजियन भी बोलते हैं। अभी ये 63 ईयर्स के एज के हैं। ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम लोटोका इन वितिलेवू, और अगर जो आपको नाम पता है जहाँ पर इन्होंने फिजी को एक वर्ल्ड मैप पर लाकर दिखा दिया था कि फिजी से भी कोई प्रोफेशनल गोल्फर आ सकता है, तो अगर जो आपको नाम पता है ज़रूर हमारे पास में 5599 पर भेजें। और 7026, आप क्या सुनना पसंद करोगे, 5599 पर आप भी मैसेज करें या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं।

0: हम पर यह सिलसिला है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का और ये चलता रहेगा 12 तक, जबकि 11 तक आपके लिए है जुगाड़ जंक्शन और उसके बाद में देसी बिज शाउटआउट का भी सिलसिला कारवा शुरू हो जाएगा आपके साथ में। आप हमें सुन रहे हैं 104.2 एफएम साथ में रोवा पर। तो जो सवाल हमने किया था आपसे कि एक फिजी से गोल्फा है जिन्होंने फिजी को वर्ल्ड मैप पर खड़ा कर दिया था, एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर दिया था अपने गोल्फ के कैपेबिलिटी पर, जिन्होंने यूँ कहे प्रोफेशनली काफ़ी टूर्नामेंट्स जीते हैं और ही बिकेम अ वर्ल्ड नेम, और ये थे नन अदर देन विजय सिंह। और विजय सिंह ने काफ़ी अच्छा फिजी को रिप्रेजेंट किया है ग्लोबली बाय प्लेइंग गुड गोल्फ, और एक अच्छा किताब फिजी को दिया है। और प्रमा महाराज आपने भी सही जवाब पहचाना, साथ में धर्मेंद्र आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच इसके लिए। इसके साथ में 5946 आपने भी सही जवाब दिया है और थैंक यू सो मच कि एक ऐसे गोल्फा को आपने याद रखा जिन्होंने फिजी को कंट्रीब्यूट किया है बाय ब्रिंगिंग डोमिनेंस टू फिजी, उसको मार्केट किया है वर्ल्ड स्टेज पर और रिप्रेजेंट भी किया है। जबकि आज है फिजी का 56th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, इसको मनाया जा रहा है फिजी में विद पब्लिक हॉलीडे ऑन मंडे, तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर लूँ।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: माइटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माइटन मेगा हेंडरसन।
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawn mowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: Non-stop Bollywood.
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
6: हम playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
8: That's right, यह है जुगाड़ जंक्शन आपके साथ में. और आपको बता दूं कि ऐसे कुछ रूल्स में बदलाव आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, जहां पर वारंट ऑफ फिटनेस को लेकर जो पीरियड है इसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड किया जा रहा है. नेक्स्ट मंथ से जितने भी न्यूली रजिस्टर्ड कार्स रहेंगी हमारे सड़कों पर, इनको जो अपना सेकेंड वारंट ऑफ फिटनेस है फॉर द नेक्स्ट 4 years फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा. तो जो न्यूली रजिस्टर्ड कार्स होंगी तो सेकंड वारंट ऑफ फिटनेस इनका एट अ पीरियड ऑफ 4 years रहेगा. और इसके अलावा जो व्हीकल्स एज्ड बिटवीन है 4 to 14 years, अब एनुअली इनका वारंट ऑफ फिटनेस नहीं रहेगा बल्कि 2 yearly चेक रहेगा. तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि इसमें एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है. कंज्यूमर्स सेव कर सकेंगे अपने वारंट ऑफ फिटनेस के कॉस्ट पर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपने गाड़ियों या व्हीकल की सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए इसका ध्यान रखना होगा और कुछ ना कुछ सेल्फ चेक्स कराने होंगे ताकि आपकी गाड़ी सेफ है टू ट्रेवल ऑन द रोड. साथ में जितने भी लोग आपके साथ में सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल सेफ रहे. तो दिस इज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन. जबकि जो न्यूली रजिस्टर्ड कार्स रहेंगी इनका जो सेकेंड वारंट ऑफ फिटनेस रहेगा एट एन इंटरवल ऑफ 4 years रहेगा. इसके साथ में गाड़ी जो 4 to 14 years की ओल्ड कैटेगरी में आती है इनके लिए एनुअली नहीं बल्कि 2 yearly चेक ये रहेगी.

0: Saturday Breakfast on Hum. You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, अभी का साथ है और कुछ 6 मिनट रह गए 11 बजने में। 11 बजे के बाद में आपके साथ में रहेगा देसी बिज शाउट आउट, जिसके लिए आप अभी से ही अपना जो बिजनेस डिटेल्स है 5599 पर मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में।

0: You're listening to Avineet.
1: On the waves of hum, मैं हूँ आपका साथी अभी और हमारा और आपका साथ 12 तक रहेगा, इसीलिए ये हुआ फाइनल आवर आज के लिए. और ऐसे में देसी बिज शाउट आउट का जो कारवा है शुरू हो गया है. आपको अपने देसी बिजनेस वेंचर्स को प्रमोट करने हैं, 5599 पर आप टेक्स्ट भेजें हमारे पास में और यहाँ से अपने आपके बिजनेस डिटेल्स को हम ज़रूर और लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि आपको भी एक जेंटल पुश मिल सके जो आप मेहनत करते हो अपने वेंचर को चलाने में. इसके लिए कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो सके, इसके लिए आपको 5599 पर मैसेज करना होगा. लगे हाथों आपको ये भी बता दें कि दिवाली स्पेशल ऑन हम ये भी रहेगा आपके साथ में, जबकि आने वाले दिनों में आप सुन सकेंगे रामायण एक गाथा जिसे आप हम पर सुन सकेंगे. एक कोशिश है जहाँ पर स्पेशली प्रोड्यूस्ड सीरीज़ है, 1 to 2 minutes का ये जो एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स है ये आप बारी बारी से हम पर सुन पाएंगे, जहाँ पर ऐसी कथाओं पर ये जो एपिसोड्स है ये आपको रिविजिट कराएंगी, उन करेक्टर्स को आपको रिविजिट कराएंगी और रामायण के उस मोमेंट्स पे भी आपको लेकर वापस जाएगी. तो ये सभी कुछ आपके लिए डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे प्ले होता रहेगा जिसे आप सुन सकेंगे. इसके साथ साथ में जो इलेक्शन स्पेशल ड्राइव शो है जहाँ पर सैंडी और रुजबे बातें कर रहे हैं जितने भी पार्टी के रेप्स हैं उनसे, और साथ में जो लीडर्स हैं या फिर जो पार्टी में नॉमिनेटेड लोग जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनसे बातें हो रही हैं. और अब की बार उन्होंने बातें की हैं खरक सिंह तकनीनी से जो कि लेबा के एक उम्मीदवार है, और उन्होंने बताया है कि उनकी सोच क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर, साथ में रिटेल क्राइम को लेकर और कम्युनिटी सेफ्टी को लेकर. तो अगर जो आप ये सब कुछ सुनना चाहते हैं जबकि जो इलेक्शन से 7 November को रहेगी, तो ऐसे में आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं. लेकिन अभी के लिए ये है कारवा देसी बीज शाउट आउट का, और जैसे हमको कुछ ना कुछ डिटेल्स आपके बिजनेस के बारे में आप भेजेंगे तो यहाँ से हम उसको ज़रूर आपके लिए और लोगों तक पहुँचाएंगे. ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन हम, मैं हूँ अभी आपका साथी

हम पर यह है देसी बीस शाउट आउट। और अगर जो आप एक टेस्ला के मालिक है, इफ़ यू ओन अ टेस्ला, और अगर जो आप हाई एंड एसेसरीज ढूंढ रहे हैं एट रीजनेबल प्राइसेस, तो आपको सिर्फ विजिट करना होगा TESX.co.nz। एक बार फिर TESX.co.nz पर आप जाइए, ताकि अपने टेस्ला के लिए जो एसेसरीज आप ढूंढ रहे हैं, इसे आप काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर ले सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है TESX.co.nz। इसके अलावा अगर जो आप शिफ्टिंग कराना चाहते हैं, हाउस मूविंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप धर्मेन आचारी को कॉल कर सकते हैं। रीजनेबल और रिलायबल सर्विसेज ये देते हैं। आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 02113798031 पर। ओकलैंड वाइट सर्विसेज ये देते हैं धर्मेन आचारी, और 02113798031 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हाउस मूविंग ही नहीं, अगर जो आपने कोई सामान खरीदा है मार्केट प्लेस पर, कोई फर्नीचर है जिसके लिए आपने आपने पैसे भरे हैं, लेकिन उसको मूव करने में आपको शायद मुश्किल हो रही है, तो धर्मेन आपको इसमें भी मदद कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने खरीदी है जिसके लिए आपको एक बड़े ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और फिर लेबर की ज़रूरत है जो आपको मदद पहुँचा सके, तो धर्मेन आपको इसमें भी असिस्ट कर सकते हैं। 02113798031 पर आप कॉल कर सकते हैं। और जबकि नवरात्रि शुरू होने वाली है, साथ में दिवाली भी आ रही है, अगर जो आप घर से मिठाइयां बनाकर बेचने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, तो आप 5599 पर अपने जो डिटेल्स हैं हमारे पास में भेज सकते हैं, एंड वी विल गिव यू अ शाउट आउट ऑन हम।

यह देसी बी शॉर्ट आउट अभी के साथ में, और जबकि प्रमोशन चल रहा है और ऐसे में फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जिसके बारे में हमने आपको सुबह भी बताया, जहां पर आप शानदार प्राइजेस जीत सकते हैं दिवाली के लिए विद हम, तो ये जो प्रमोशन है इसका जो आखिरी पड़ाव है अभी आपके साथ में खेल रहा हूं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, फॉर्च्यून लिखे और साथ में स्पाइस देकर अपना नाम लिखे, फॉर्च्यून लिखकर आप स्पाइस दे उसके बाद में अपना नाम लिखे और फिर 5599 पर आप टेक्स्ट करें, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपका आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर दिया जाएगा, जहां पर आप $1000 कैश जीत सकेंगे। एक ही विजेता ठहरेगा और एंट्री भेजने पर आप $1000 कैश इनाम के हकदार रहेंगे, जिसके लिए जबकि साल एंड होने वाला है तो ढेर सारे खर्चे भी होते हैं, पहले तो दिवाली फिर उसके बाद में क्रिसमस के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे आपको राहत मिलेगी। आप मल्टीपल एंट्रीज भेज सकते हैं अगर जो आप चाहे तो, लेकिन रिमेंबर करें स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई। तो आपको सिर्फ फॉर्च्यून लिखना है, FORTUNE फॉर्च्यून लिखकर स्पाइस डाले, फिर अपना नाम लिखे और 5599 पर अपना जो एंट्री है भेजे, ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल कर सके। तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत जहां पर ढेर सारी प्राइजेस है जीतने को इस दिवाली विद हम, ये जो ड्रॉ है 30th अक्टूबर को रहेगा और ऐसे में आपके हाथ $1000 कैश इनाम लग सकता है। तो इट्स स्ट्रिक्टली फॉर 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मोहित चौहान की आवाज़ में एक गाना सुनवाएंगे जो कि 5 मिनट का गाना है। इस गाने के अंदर अंदर आपको मल्टीपल एंट्रीज अगर जो आप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, सो दैट यू हैव मोर चांसेस टू विन, लेकिन स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई।

0: हाँ, कुछ एंट्रीज मिल चुके हैं। प्रवीण, आपकी एंट्री शामिल हो चुकी है, साथ में चरिशा, अश्विन, आपका भी एंट्री मिल चुका है, सवित्री, आपने भी मैसेज किया, इसके साथ में शनाया, आपने भी मैसेज किया, साहिल, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आया है, इसके साथ में हरी मनी रेवा से, प्रभाष, आपका भी मैसेज आया है, आपका भी नाम ड्रो में शामिल हो गया है, इसके साथ में डिम्पल है, डिम्पल, आपको भी शामिल कर दिया गया है, सतीश, शेरोन, अपेक्षा, और साथ में रोज़, रविनेश एंड धीर, अंतरप्रीत, थैंक यू सो मच, आप भी सुन रहे हैं, और साथ में एश वेलिंगटन से है, शेरन है, आप सभी के नाम को ड्रो में शामिल कर दिया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक, शायद इस शो में आपको जो आपने एंट्री भेजी है इससे आपको जो $1,000 का कैश इनाम है ये मिल सके।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: You went to Big Boss, right?
3: I went there once, yeah.
4: That was for Nikamma, na?
3: For Nikamma, yes.
4: So, what do you think about Salman Khan?
3: मैंने सलमान सर के

0: मेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia, Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
4: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज. चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का. आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss. This

0: Saturday breakfast on Hum.
1: सरडे ब्रेकफास्ट से लेकर अब तो ब्रंच का समय भी हो चुका है या लोग लंच भी कर रहे होंगे, तो देसी बिज में आपको बता दूं राज ऑटोमोटिव एंड टायर के बारे में, जो कि सिचुएटेड है 11 रायन प्लेस मेनकाओ सिटी में। यहां पर ये ढेर सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल आपको करानी है या फिर कोई टायर रिप्लेसमेंट करवानी है या फिर डायग्नोसिस है ये भी करवाना है, तो आप जा सकते हैं राज ऑटोमोटिव एंड टायर 11 रायन प्लेस मेनकाओ। यहां पर ये इंश्योरेंस जॉब्स भी लेते हैं और इसके साथ साथ आफ्टर पे सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो राज ऑटोमोटिव एंड टायर 11 रायन प्लेस मेनकाओ 021-210-7669।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा ऐसे में, जबकि आज 10th of October है तो फिजी में फिजी का इंडिपेंडेंस डे मार्क किया जा रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कुछ ट्रिविया और साथ में कुछ क्वेश्चंस या फिर यूं कहें कि कुछ सवाल क्विजेस आपके लिए लेकर आऊं। जबकि पिछले हवा में हमने बातें की थी विजय सिंह के बारे में, तो एक और एक फिजी से खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज में काफ़ी अच्छा नाम किया और साथ में फिजी को एक वर्ल्ड स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया था, जबकि इनके खेल के द्वारा, इनके प्ले के द्वारा फिजी पर काफ़ी हाईलाइट हुई थी। ये सेवन्स रग्बी में काफ़ी नाम किया है इन्होंने, अभी तो ये 58 ईयर्स के हो गए हैं और साथ ही साथ में रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोचिंग असाइनमेंट्स ये लिया करते हैं। और इसके साथ में अगर जो इनको निक नेम से देखा जाए तो इनकी बिल्ड की वजह से इसको लिटिल मेस्ट्रो कहा जाता था, द लिटिल मेस्ट्रो। तो ये रग्बी की दुनिया में सेवन्स में ज़्यादातर के नाम बनाया, ग्लोबली काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है और एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो काफ़ी अच्छा काम किया है रग्बी को लेकर, सेवन्स को लेकर। और हमेशा जब भी ऑल ब्लैक्स यानी न्यूजीलैंड सेवन्स और साथ में फिजी सेवन्स के बीच में खेल होती थी, जहाँ पर न्यूजीलैंड के कैप्टन हुआ करते थे एरिक रश, तो उसी जगह पर फिजी को कैप्टन ये किया करते थे। क्या आपको इनका नाम पता है? 5599 पर ज़रूर भेजे इफ़ यू नो कि लिटिल मेस्ट्रो फिजी सेवन्स टीम के लिए कौन था, जेसी नंबर 6 में।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और फिजी इंडिपेंडेंस डे के तहत आपसे बातें हो रही हैं एक ऐसे फेमस खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने रग्बी सेवंस में काफ़ी नाम किया है और उनके बिल के कारण उनको लिटिल मेस्ट्रो कहा जाता था। उनके खेल को देखकर काफ़ी अच्छा खेलते थे और कहीं ना कहीं टैकल्स के बीच में से निकल जाते थे या फिर उनका जो एक अलग साइड स्टेप था या फिर गूस स्टेप था इसके लिए ये काफ़ी रिनाउंड थे। तो इनका नाम हमें चाहिए, 5599 पर ज़रूर हमारे पास में टेक्स्ट करें अगर जो आपको मालूम है कि बातें किन के बारे में हो रही है। वैसे तो संध्या ने फाइंड आउट कर लिया है, साथ में 6367 ने भी अपना जवाब दिया है। अगर जो आपको पता है तो आप भी अपना जवाब जरूर भेजें हमारे पास 5599 पर।
1: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
3: MediaWorks Complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouth.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
1: Advertise with
5: MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
6: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
9: DNC supply.
1: Zabardast hits.
10: Shuru ho jaye to rukte nahi.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Hum.
1: Saturday breakfast on Hum.
11: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और अब जबकि 12 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा तो जिस खिलाड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे वो थे नन अदर देन वैशाली सरेवी जिसका नाम भेजा था हमारे पास में 6367 और साथ में संध्या ने एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया हमें और फीजी को ग्लोबल स्टेज तक भी पहुँचाए। इसके साथ में देसी बिज शार्ट आउट में क्रिश मोविंग सर्विसेज, ये अगर जो आप इनकी सर्विसेज चाहते हैं, आई मस्ट से कि अगर जो आप वीकेंड में, वैसे वीकेंड को आप काफ़ी लुक फॉरवर्ड करते हो लेकिन जैसे ही लोन मूविंग का ख्याल आता है तो आपको फिर लगता है कि यार कैसे होगा, तो अगर जो आपको लोन मूविंग के लिए सर्विसेज चाहिए क्रिश मूविंग सर्विसेज 02111226 17 02111226 17 फोर्टनाइटली आकर ये आपके जो लोन मूविंग है कर जाएंगे और इसके बाद में आपको काफ़ी रिलायबल सर्विसेज भी मिलेगी। तो क्रिश को आप कॉन्टेक्ट करें ऑन 02111226 17 जबकि ओकलैंड वाइड सर्विसेज ये देते हैं

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था. सुबह 6 से आपने हमें कंपनी किया 104.2 FM साथ में रोवा पर आप जुड़े रहें, इसके लिए शुक्रिया. और यही वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी ठीक 12 पर, और ढेर सारा और इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे आपके लिए. लेकिन आज के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन्जॉय योर सैटरडे. एंड आपको पता है कि आपको क्या करना है, डू टेक केयर. फिर मिलेंगे, बाय.

0: weather update.
1: इस हफ्ता तो मौसम बहुत ही बढ़िया गया है एंड आज भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है, लेकिन शाम के समय कुछ लाइट शावर्स आप फील कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेनली एट नाइट। नॉर्थ ईस्ट की ओर से हवाएं चलेंगी डेवलपिंग इन द मॉर्निंग और आज तापमान 21 डिग्रीज रहने वाला है एंड इट डज फील लाइक दैट वी आर गेटिंग मोर क्लोजर टूवर्ड्स समर। कल के लिए कल थोड़ी सी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

0: Yo.
1: Radio Pop.
2: बारह बजकर तीन मिनट हो चुका है, शनिवार है आज, द 10th of October 2026। बहुत ही खास दिन है, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ फिजी, क्योंकि आज दुनिया भर में फिजी वाले जहां भी है आज फिजी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड व्हाइल आई वाज कमिंग टू वर्क, हमने कई लोगों को फिजी टी शर्ट में देखा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर हेडिंग टुवर्ड्स सेंटा पार्क। तो सेंटा पार्क में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे, प्लस आप क्या कर रहे हैं फॉर फिजी डे ये भी आप हमें बता सकते हैं। कल वेल आई वॉज एट माई अदर वर्क, आई केम अक्रॉस अ सेइंग फ्रॉम डॉक्टर मलोनी हंटर लव। इन्होंने कहा है कि बी अ रिस्क टेकर, आई एम अ रिस्क टेकर, एंड बींग अ रिस्क टेकर आई टेंड टू रन द रिस्क ऑफ फेलिंग, बट दैट इज वॉट मेक्स मी अ विनर। मैं रिस्क लेता हूँ और रिस्क लेने वाला होने के नाते मैं फेल होने का रिस्क लेता हूँ, लेकिन यही मुझे विनर बनाता है। रिस्क लेना अनजान में कदम रखने जैसा है, और यही ज़िंदगी के कुछ सबसे शानदार मौके मिलते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम पर्सनल ग्रोथ और खोज के दरवाजे खोलते हैं। अनिश्चितता के उन्हीं पलों में हम अपनी असली क्षमता का पता चलता है। याद रखें कि रिस्क सिर्फ फेल होने की संभावना के बारे में नहीं है, बल्कि वे शानदार उपलब्धियों और अनुभवों का वादा भी करते हैं। वे हमें कीमती सबक और समझ देते हैं जो हमें तब नहीं मिलते अगर हम हमेशा सेफ खेलते हैं। तो क्या आप रिस्क लेते हैं? वैसे हर रोज़ हम किसी न किसी तरह से जाने अनजाने रिस्क लिया ही करते हैं, लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क द चांस ऑफ बिकमिंग अ विनर इज हाई। इसके साथ आइए शुरू करते हैं रेडियो पब। द 10th of October 2026 है और मैंने कहा कि 12 बज चुके हैं, तो मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूँ ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवा, जहाँ कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और दिली इस्तकबाल कर रहे हैं ऑन द एयर वेव्स ऑफ हम। स्वागत है आपका, क्योरा नमस्कार एंड निसम्बोला।
3: हम पर आपके साथ हैं जिकाश।

ऑलराइट, तो चलते हैं कम्युनिटी मैसेजेस में, कुछ देख लेते हैं कहां पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज का पहला सवाल, आज है फिजी डे, मतलब आज के दिन ही 10th अक्टूबर को फिजी गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूलर्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटिश जहां जहां भी गए हैं काफ़ी इन्होंने एक्सप्लोइट किया है रिसोर्सेज को, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उनका काफ़ी योगदान भी रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ दैट्स माय टेक, आपका कुछ और विचार हो सकता है एंड वी कैन ऑल अग्री टू डिसअग्री। लेकिन आज है 10th ऑफ अक्टूबर, फिजी डे सेलिब्रेट होने हो रहा है तमाम जगहों पर, जैसे कि मैंगनी सेंटर पार्क में आज सुबह 9 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो 141 रॉबर्टसन रोड मैंगनी में है। और यहां पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक, मार्केट स्टॉल्स, ट्रेडिशनल फिजियन फूड एंड चिल्ड्रंस प्ले जोन भी यहां पर बनाया गया है, प्लस कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी आपके लिए यहां पर उपलब्ध किए गए हैं। तो यहां जाकर आप झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं फिजी बिकमिंग इंडिपेंडेंट। लेकिन सवाल ये है, फिजी को इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो चुके हैं? तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता लगाना होगा। वो लोग जो शायद 50 साल से ऊपर है, यू माइट नो द फर्स्ट हैंड कि कब फिजी इंडिपेंडेंट हुआ था। यू माइट हैव बीन देयर जब इंडिपेंडेंस फिजी को मिली थी फ्रॉम ब्रिटिश। तो सवाल, फिजी को इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो चुके हैं टुडे बीइंग द 10th ऑफ अक्टूबर? कम्युनिटी न्यूज़ में देखें तो आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है एंड पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद नवरात्रि के मेले लगना शुरू हो जाते हैं। तो रामकृष्ण मंदिर 25 ओंसलो एव मनुकाव में कल से 11th अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में शाम 6 से हर रोज़ यहां पर गरबा डांडिया रास होने वाला है आफ्टर नवरात्रि कथा। श्री राम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर 14 बैक पार्क प्लेस बगडेल में भी नोट शो में भजन जेमिंग एंड डीजे गरबा 18th अक्टूबर को रहेगा फ्रॉम 6:30 PM। डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM से 9:30 PM के बीच में होने वाला है। श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर पर भी कल से नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। हर रात 7 से 9 बजे के बीच में कथा होगी एट 30A वोम्सली रोड ओटाहू ऑकलैंड में। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट भी नवरात्रि की खुशियां और कथा होने वाली है विथ दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ट्यूजडे 20th अक्टूबर को फ्रॉम 6:30 PM 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव में, जहां पर गरबा डांडिया और हुद्दा तासा रास डेली होने वाला है आफ्टर कथा 11 से 20th अक्टूबर के बीच में। द BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब होस्ट कर रहा है इट्स 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट 24th और 25th अक्टूबर को। ये 2 दिनों तक का इवेंट रहने वाला है जहां पर अ रेंज ऑफ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स होने वाला है, जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड टग ऑफ वो। बचपन की याद आपको यहां पर आने वाली है। There will also be plenty of fun activities for children and women, including lemon and spoon races, musical chairs and children's races. एंट्री फ्री है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वो, लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेयर्स में भी आप भाग लेना चाहते हैं तो रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। टू रजिस्टर यू कैन कॉल प्रदीप ऑन 021-238-5948। दैट इज़ प्रदीप को आप कॉल करें ऑन 021-238-5948 पर। और भी जानकारी हमारे पास है, इसके बारे में हम बारी बारी से आपको इत्तला करते रहेंगे। सवाल अभी के लिए ये है कि फिजी को इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो चुके हैं?

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. And for a limited time, take a further 10% off all sofas. Offer ends Monday, only at Freedom.
5: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardo's is asking LTRL to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
6: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
7: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, select ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
9: PNC Supply.

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: जल्दी जल्दी जवाब आप देते रहे कि फिजी को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी प्राप्त हुए कितने साल हो चुके हैं, मतलब व्हाट वाज द ईयर जब फिजी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बहुत साल नहीं हुए हैं, आई हैव टू डू सम रिसर्च। फिजी माइट बी वन ऑफ द न्यूएस्ट या फिर वो कंट्री जो अभी हाल ही में जिनको इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ है फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियंस को इंडिया से फिजी लाया गया था टू वर्क इन द ऑन द इंडियन ऑन द शुगरकेन प्लांटेशन, एंड वहाँ से शुरुआत हुई फिजी इंडियंस का। कुछ लोग फिंडियंस कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को FBI कहते हैं, मतलब फिजी बोर्न इंडियंस। तो अगर आप एक बहुत ही प्राउड फिजियन इंडियन हैं, आप सभी को निसंबोला अ वेरी हैप्पी फिजी डे हम विश कर रहे हैं। कितने साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस प्राप्त करे हुए, या फिर वो कौन सा साल था जब फिजी इंडिपेंडेंट हुआ था, बस इस गाने तक का समय है आपके पास। आप हमारे पास मैसेज करें, हैप्पी फिजी डे लिखकर आप भी भेज सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फानो इन टू द मैसेज, ताकि हमें भी खुशी हो क्योंकि हम भी फिजी के हैं एंड साथ में मिलकर आज का ये दिन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके अलावा दिवाली भी आने वाली है। कब है दिवाली जानते हो? वेल, जानते तो होंगे, लेकिन दिवाली के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, और तैयारियों के बीच में कई सारे औसम औसम इनाम हम मतलब HUMM FM आपके लिए लेकर आया हुआ है। छोटे मोटे नहीं भाई, हज़ार डॉलर्स लागत के इनाम हम आपको देना चाहते हैं। क्यों, पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो बस यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ में एंड एन्जॉय द नेक्स्ट ट्रैक, जिसमें थोड़ी सी आवाज़ है कुमार विश्वास की, एंड दिस पोएट्री जिसकी थोड़ी सी झलक इस गाने में आपको मिलेगी। अराउंड 16-17 ईयर्स बैक आई परफॉर्म्ड दिस पोएट्री लाइव ऑन स्टेज ड्यूरिंग ए फेस्टिवल, एंड तभी से इस पोएट्री का मैं बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी पोएट्री को एंड दिस ऑसम ऑसम सॉन्ग फ्रॉम राजीव राजा।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
4: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
5: Tick off your spring to-do list for less at Mitre 10. Save $50 on selected 10-litre solar guard exterior and roof paint. And get growing with 3 10-centimetre herb plants for just $18. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
6: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
7: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: The beat of Bollywood.
0: World's best, hamari koi branch nahi hai. Yo.
1: Big Radio Pub.
8: वेलकम बैक टू हम जहाँ पर रेडियो पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट सवाल आपसे हमने किया है कि फिजी को इंडिपेंडेंस प्राप्त किए कितने साल हो चुके हैं। 1970 10th अक्टूबर को फिजी आज़ाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो 56 इयर्स हो चुके हैं। वो लोग जो 56 इयर्स से ज़्यादा है, नॉट 57, आप एक साल के थे तो शायद आपको मालूम नहीं होगा। अगर आप 60 के आसपास हैं तो शायद आपको वो मोमेंट याद होगा जब 1970 में 10th अक्टूबर को इंडिपेंडेंस गेन किया था फिजी ने। अगर आपको याद है तो डू गेट इन टच विद मी, द एग्जैक्ट मोमेंट शायद ये रेडियो पर बताया गया या फिर आपने इसको लाइव देखा है। जो भी हो, आप सभी को अ वेरी हैप्पी फिजी इंडिपेंडेंस डे हम विश कर रहे हैं, अ वेरी हैप्पी फिजी डे हम विश कर रहे हैं। नाउ उसके अलावा हमने कहा था दिवाली के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। एंड दिवाली 8th ऑफ नवंबर को ऑफिशियली कैलेंडर को अगर देखें तो सेलिब्रेट होने वाला है न्यूजीलैंड में, तो उसके लिए हम आपको दिवाली के लिए तोहफे बहुत ही जल्द प्रदान करना चाहते हैं। और छोटे मोटे नहीं भाई, अगर आप इसके बारे में पता लगेंगे तो शायद न्यूजीलैंड में हमसे ज़्यादा और हमसे बेहतर इनाम आप किसी के साथ नहीं प्राप्त कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यूल। आप तो जानते हैं कि फ्यूल की महामारी चल रही है। एंड आई केम अक्रॉस और वेंट अक्रॉस ए फ्यूल स्टेशन जस्ट दिस मॉर्निंग जहां पर 91 पेट्रोल वाज सेलिंग फॉर $3.40 अ लीटर, एंड दैट्स जस्ट यू नो अ बैंक ब्रेकर, अ वॉलेट ब्रेकर। तो हम आपको देना चाहते हैं $100 का नहीं, 500 का नहीं, $1,000 लागत का फ्यूल वाउचर। ये $1,000 लागत का फ्यूल आपके कार में कितने दिन लास्ट कर सकता है इसका सिर्फ आप अनुमान या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस माइट लास्ट यू मोर देन 2 months ईजिली। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम से घर, घर से काम, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करते हैं तो और भी ज़्यादा ये फ्यूल आपके लिए चलने वाला है। $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर आपको हम दे रहे हैं थैंक्स टू इनडेलिबल होम्स। योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स indelibleHomes.co.nz विजिट करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के सपनों का महल बनाने के लिए। तो इंडेलिबल होम्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ओर से आपको हम देना चाहते हैं $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर, और इसके लिए सिर्फ एक ही विनर रहने वाला है। याद रहे, आपको बस इतना ही करना है, इंडेलिबल होम्स दैट इज IH स्पेस, अपना नाम लिखे एंड सेंड इट टू 5599 टू गेट इनटू द ड्रॉ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा नोकझोंक नहीं करेंगे आपसे, बस IH लिखे स्पेस आपका प्यारा सा नाम एंड सेंड इट टू 5599 एंड यू विल गो इनटू द ड्रॉ। याद रहे, आपको जब आप मैसेज करते हैं स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स अप्लाई होते हैं, तो आप मैसेज झट से भेजें हमारे पास 5599 पर। इतना ही करना है, IH लिखे स्पेस आपका नाम एंड सेंड दिस टू 5599। ड्रॉ विल बी हैपनिंग ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर।

अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ आपके लिए हम शामिल कर रहे थे ऑन रेडियो पब, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। नाउ फ्यूल हम आपको देना चाहते हैं, वो भी $1,000 लगत के। एंड आई हैव डन सम कैलकुलेशन, अगर आप गाड़ी चलाते हैं नाउ, आपका फ्यूल कितना लास्ट करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ड्राइव, हाउ यू ड्राइव एंड वेयर यू ड्राइव। तो इस पर हम बातें नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट अ कार जिसकी टंकी 50 लीटर्स की है। फ्रॉम जीरो टू फुल 50 लीटर्स का फ्यूल लगता है। तो वॉकिंग विथ $3.40 पर लीटर आपको 294.1 लीटर्स फ्यूल मिलने वाला है। अगर 50 लीटर की का टैंक है तो अराउंड 5.8 बार आप अपने कार को जीरो से फुल तक फिल कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 6 बार, अगर एकदम ड्राई होने पर आप फिलिंग नहीं करते, उससे पहले ही कर लेते हैं, तो 6 बार आप अपनी गाड़ी को फुल टैंक करवा सकते हैं, अगर आपकी 50 लीटर्स का गाड़ी है जिसमें 50 लीटर्स का टैंक है। विच आई थिंक अगर 2 लीटर की गाड़ी है तो इट कम्स स्टैंडर्ड, आप ड्राई से फुल करते हैं तो अराउंड 50 लीटर्स पहुंच जाता है। आई हैव अ सेल्टोस जो 2 लीटर्स की है, एंड लाल बत्ती बनने के बाद मैं अगर फ्यूल भरवाता हूं तो 50 लीटर्स लगते हैं, एंड आई एम टॉकिंग इन दैट रिगार्ड। तो 6 बार आप अपने व्हीकल को फुल टैंक कर सकते हैं। अब आप सोचे 6 बार फुल टैंक करेंगे व्हीकल, आप कितना माइलेज कर सकते हैं, कितने दिनों तक आपको फ्यूल फ्री में मिलने वाला है। तो ये फ्री फ्यूल प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धन्यवाद देना होगा इनडेलेबल होम्स का, एंड हमारे साथ में होकर कंपटीशन में शामिल हो जाए। आपको हम 3 मिनटों का समय दे रहे हैं, बस IH किसी ने दिवाली लिखकर भेजा है। वेल, दिवाली के लिए प्रमोशन है, लेकिन कंपटीशन में शामिल होने के लिए आपको लिखना है IH स्पेस आपका प्यारा सा नाम एंड सेंड इट टू 5599। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, राधिका, राहुल श्रीवास्तव है, धीर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, वंशील, राहुल, उमा, नवनीत, जगदीश राम, बिमल, विद्युत, अमित भंडारी, आप सभी को हम इस अगले गीत में शामिल कर रहे हैं। You're listening to Chikash.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे ओनली ऑन हम
8: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
9: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
10: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
11: Keen to score 20 cents per litre off your fuel? Scan Club Plus from Friday to Sunday when you spend $100 at New World, Pack and Save or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: एक बज रहे हैं हम पर, मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं इन रेडियो पब। 10th of October है, बहुत ही खास दिन है, फिजी इंडिपेंडेंस डे, सभी काफ़ी फिजियन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड दूसरी ओर आज रात 7:10 धमाकेदार खेल होने जा रहा है राइट हियर इन आवर बैकयार्ड ईडन पार्क पर, जहां पर द ऑल ब्लैक्स आर होस्टिंग द ऑस्ट्रेलियन रग्बी यूनियन टीम। व्हाट्स एट स्टेक? वेल, ऑल ब्लैक्स की बातें करें तो द ऑल ब्लैक्स कैरी एन अनबीटन 53 टेस्ट स्ट्रीक एट ईडन पार्क स्ट्रेचिंग बैक टू 1994 से अभी तक ऑल ब्लैक्स को ईडन पार्क में किसी ने भी नहीं हराया है। 53 मैचेस हो चुके हैं ऑल ब्लैक्स ने खेला है ईडन पार्क पर, और आज 54th मैच होगा। ऑस्ट्रेलियाज लास्ट विन एट द ईडन पार्क वॉज इन 1986, 22-9 से ऑल ब्लैक्स को पराजित किया था। क्या वो इतिहास दोहरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आज ईडन पार्क पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अ फॉर्मिडेबल साइड जिन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बुरी तरह से ऑल ब्लैक्स को 3 बार हराया है। तो क्या दिस स्टेट विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू गेन अ विक्ट्री ओवर ऑल ब्लैक्स, क्योंकि ऑन पेपर ऑस्ट्रेलियन साइड आर लुकिंग रियली गुड, या फिर ऑल ब्लैक्स दे हैव गोन टू द ड्राइंग रूम एंड दे हैव गॉट देयर गेम प्लान सॉर्टेड टू टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया। तो ये खेल होने वाला है आज 7:10 पर 7:10 न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड टाइम ईडन पार्क ऑकलैंड में। इसके अपडेट्स हम शेयर करते रहेंगे ऑन आवर सोशल्स, तो डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद द ऑसम वॉइस ऑफ मोहित चौहान। मैं हूँ जिकाश।